एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास के 18वीं तिथि तदनुसार 9 अगस्त 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः का

0: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के

0: 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आए सुनते हैं खेती की बातें। कंपोस्ट बनाने की विधि आलेख एवं कथ वाचन सुनीता अग्रवाल की है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो, और मिश्रण या कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं, उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए।

0: से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्व कुछ होते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके। यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना सबों के हित के लिए हितकारी है, किसानों के लिए, मानव सेहत के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। तो फिर किसान भाइयों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें में सुनीता अग्रवाल से कंपोस्ट बनाने की विधि। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। एपिसोड नंबर 232।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आए सुनते हैं चिंतन, चिंता नहीं चिंतन करे, संकलन निर्वाचन निर्मला तिवारी की।

चिंता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य चिंता को स्वयं ही पैदा करता है। जितनी लोग उतनी चिंताएं। हर इंसान की अपनी चिंताएं हैं, अपने विषय हैं। कोई किसी बात को लेकर चिंतित है तो कई किसी अन्य बातों को लेकर। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई अपने दुखों से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी हो जाता है। तभी तो किसी का दुख किसी के लिए सुख है तो किसी का सुख किसी के लिए दुख। चिंता सागर की उस सतह की तरह है जहां पर सदा उथल पुथल मची रहती है। लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। चिंतन सागर में उस ठहरे तल का नाम है जहां शांति रत्न और खजाने छिपे हुए हैं। चिंता यानी संसार और चिंतन यानी स्वयं। चिंता करने वाला सदैव दूसरों में उलझा रहता है। कमी स्वयं में नहीं दूसरों में ढूंढता है। अपनी असफलता और दुखों का जिम्मेवार भी दूसरों को ठहराता है। सुख के लिए स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को परिवर्तित करने में लगा रहता है। चिंतन में व्यक्ति स्वयं को टटोलता है, अपनी नजरें स्वयं पर टिकाता है, अपनी जांच पड़ताल करता हुआ कमी किसी दूसरे में नहीं बल्कि अपने आप में देखने की कोशिश करता है। चिंता करने वाले की यात्रा सांसारिक है तो चिंतन करने वाले की यात्रा अंतर यात्रा। चिंता श्रृंखलाबद्ध समस्याओं की निरंतरता का नाम है। तभी तो एक समस्या खत्म होती नहीं, उसके साथ अनेक प्रश्न करना उचित हो जाता है। किंतु हर बात पर चिंता करना यह तो बेकार है। प्रसिद्ध विचारक बीचर का भी मानना था कि व्यक्ति काम से नहीं मरता है, चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है हम उससे अधिक और अधिक की आस लगाए रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों के पास देखकर ईर्ष्या करते हैं और इसी आशा में घुलते रहते हैं कि हमें कैसे प्राप्त हो जाए सब कुछ, और यह चिंता कई परेशानियों का कारण बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो फिर चिंता के लिए फालतू तो समय नहीं होता है और आप चिंता से दूर होते हैं। चिंता कुछ हद तक सही है। समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए किंतु उसे मनोरोग नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, चिंतन करें चिंता नहीं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन निर्मला तिवारी से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अनूप जलोटा की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव। भेंट वार्ता का हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।

0: तो ज़माना मोबाइल का है। हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आँखों की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल। डॉक्टर साहब स्वागत।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। आए दिन हर समय लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, आँखों में जलन, माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
1: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है। लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी

पौन घंटे एक घंटे या उससे अधिक होता है, तो उसकी जो भी खामियां हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विजन 6x6 नॉर्मल विजन है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है, और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उस आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है, और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक उसके लिए आवश्यक प्रिकॉशन नहीं लेगा या बच्चे नहीं लेंगे, तब तक उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं आराम होगा। तब दो तीन बातें हैं। एक तो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। कई बार जैसे बैंकिंग सर्विसेज में, ऑफिशियल में, आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है। तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए, तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन का भी हंसता है, कि बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं, नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है, तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियां पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत बच्चे तैयार नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बच्चे इतने तेज हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर उनका किया जाए तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। आज के समय काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है, ना माँ बाप के पास समय है। उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो 6 महीना साल 2 साल 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं। आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट जो करते हैं ना, कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है, थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी काम टॉयलेट चल जाएं, बाथरूम चल जाएं, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, जिस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में, चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल 30 साल 32 साल हो गया है, लड़कियाँ लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल पे, क्यों अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या कैसे करती हो, सो के पढ़ती हो, सो के पढ़ते हो, तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है।

0: कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठ कर मोबाइल देखो बीच में इंटरप्ट सो। तो इस तरह करें, कोशिश करते हैं उन लोग कंसोल करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का दो शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द, दूसरा होता है माथे में दर्द। और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है, जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दूर करते हैं उसकी।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राय लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं, और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे?
0: ये बहुत नुकसानदेह है। आजकल आप देखोगे कि पेपर में या मीडिया में बीच में हेल्थ संबंधी जो आता है प्रोग्राम, उसमें बताता है कि रात को आप मोबाइल एकदम मत देखो, अंधेरा में देखने की बात ही नहीं है, उसके बदले आप म्यूजिक सुना करो। ये रात को देखने का ही कारण है कि अधिकांश लोग आजकल डिस्निया या एपनिया, लॉस ऑफ स्लीप से परेशान है। मैक्सिमम लोग को अच्छी नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने के कारण नेक्स्ट डे वो फ्रेश नहीं फील करता है, उसको हेडेक होता है, परेशानी होती है। तो अगर वो टाइमिंग मेंटेन करे, सोने के पहले मोबाइल नहीं देखे, तो इसका बहुत सारा फ़ायदा उसको होगा। और साथ में सीजनल जो भी साग सब्जी या फल उपलब्ध है उसे वो ज़रूर ले। और सीजनल साग सब्जी या फल बहुत महंगे नहीं हैं, महंगे जो फल है उसकी आवश्यकता नहीं है, सस्ता फल उतना ही फायदेमंद है जितना महंगे फल फायदेमंद है।
1: जी छोटे बच्चे के माता पिता को आप क्या कहेंगे कि बच्चों पर नज़र रखें, और लगातार मोबाइल पर यदि बच्चा आपका लगा रहता है तो उससे आप उसे बचाने की कोशिश कीजिए?
0: नहीं नहीं मोबाइल पे बच्चे को बचाने की कोशिश करिए, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनको इंटरटेन करिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जिससे कि वो अपना टाइम मोबाइल को छोड़कर दूसरे रूप में बात कर सके। अगर आप नहीं समझ।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से, और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहाँ आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। अब से

0: अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां ऊर्जासुरक्षायाः महत्त्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासविषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। हर घर तिरंगा इत्यभियानम् अद्य आरभ्य अस्मिन् मासे सप्तदश दिनांक पर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्र ऐक्यं, भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थजनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिकराष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं, राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटेडी आइवर के

0: लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-U.S. comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pehelgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. No fresh Yatra

0: Convoy was allowed to leave the Bhagwati Nagar base camp in Jammu yesterday as precautionary measure amid rains and inclement weather conditions prevailing in Ramban district and parts of Kashmir. The United States has rejected China's move to establish what it called a national Nat Nature Reserve at Scarborough Reef, saying the measure could restrict Filipino fishermen's access to their traditional fishing grounds as reflected in the 2016 arbitral award. In a press release, U.S. State Department said this is yet another unilateral attempt by China to use dubious environmental and legal pretexts, backed by coercion, to advance its sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea at the expense of its neighbors. The United States stands with its ally, the Philippines, in support of a free and open Indo-Pacific, the statement further said. The United States is considering ending a provision that gives certain foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. The proposal is currently under review by the White House Office of Management and Budget and has not yet become a rule, with the details of the proposed changes not publicly available in full. A move like this could require affected H-1B skilled workers and their dependents to leave the country almost immediately. If the regulation is finalized, it would remove the existing 60-day grace period for certain workers and their dependents when the employment on which their immigration status is based ends before their authorized period of stay expires. The change could have particular significance for the Indian expat community in the U.S. Indian nationals have long been the biggest beneficiaries of the H-1B skilled worker program. In the 2024 fiscal year, 71% of approved H-1B petitions were for beneficiaries born in India, according to U.S. Citizenship and Immigration Services. More than 5.2 million people of Indian origin live in the U.S., according to recent estimates based on the U.S. Census data. India's Sagnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold medal in the under-31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in Hefei, China. In the first elimination round, 34 pairs competed and the top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands for today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे बाल सभा, बच्चों को संबोधित कार्यक्रम। राग रंग का समय होगा 7:30 पर। 8 बजे हम सुनेंगे हिंदी समाचार प्रभात दिल्ली से। दिल्ली से आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कड़ी 6। 9 बजे आप सुनेंगे जोहार पलामू। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्मी संगीत। 10 बजे का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से। 10:10 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में बॉम बेटा कीजा। 11 बजे विविधा और 12 बजे यादों की महफिल। दोपहर के 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर। 2 बजे का समय होगा दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार का। 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से हिंदी में समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:55 पर। 3 बजे का समय होगा विविध भारती में मन चाहे गीत। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती। 5 बजे का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 5:02 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 5:35 पर आप सुने युवाओं को संबोधित कार्यक्रम मेवाड़ी प्रादेशिक समाचार का समय 6:00। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी जननी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम 6:30 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे रांची से विज्ञापन, रांची से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:00 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे स्वरांजलि गीत श्लोक का ये कार्यक्रम हरिहरन की आवाज़ में। रात्रि के 7:45 पर आप सुनेंगे महुआ लोकगीतों का कार्यक्रम शारदा सिन्नम साथियों की आवाज़ में। चितपट संगीत आप सुनेंगे 8:00 8:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हंसराज हंस की आवाज़ में। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार दिल्ली से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फंकार। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं बाल सभा।

बाल सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को बाल सभा में स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल सभा में बातें करेंगे अपनी सफाई की। जी हाँ, क्योंकि आज तो आपका छुट्टी है और छुट्टी के दिनों में हमें बहुत सारे काम भी करने होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है सफाई का दिन है ना। तो चाहे वो घर की सफाई हो या अपने शरीर की सफाई हो या अपने आसपास की सफाई हो, और आपको पता है ना कि अभी जो मौसम चल रहा है वो बरसात है, और बरसात के दिनों में सफाई बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप साफ़ सुथरा रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे तो खुश रहेंगे। तो हमें बीमारी से दूर रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले अपने सफाई पे ध्यान देना है। आज आपका रविवार है, आज आपको बाल कटवाना है, नाखून साफ करना है, जूता मोजा साफ़ करना है, आपके ड्रेस गंदे होंगे उसे साफ़ करना है, साथ ही साथ आप जिस कमरे में रहते हैं कमरे की भी सफाई करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है अच्छे से ब्रश करना, अच्छे से नहाना, क्योंकि आप तो प्रतिदिन करते मगर बहुत हड़बड़ाहट में करते क्योंकि स्कूल जाना है, लेकिन आज जो है स्कूल नहीं जाना है, आज पूरा दिन घर में छुट्टी। तो क्यों ना हम अपने घरों के साथ साथ अपनी सफाई भी करें, अपने कपड़े की सफाई करें, जूता मोजा की सफाई करें, ड्रेस साफ़ करें, बैग साफ़ करें, और जो आपके घर के अगल बगल जो बागान है उसे भी साफ कीजिए, अगल बगल जो पानी भरा है उसे पानी मत भरने दीजिए। तो हम बहुत सारी बातें जो है विस्तार से करेंगे, है ना। मगर सुनते हैं आइए बहुत सारा बहुत ही सुंदर प्यारा गाना, जिससे आप भी खुश और हम भी खुश।

बच्चों, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम चांद के पार जा पाएंगे। और हमें स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सफाई बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अभी जान रहे हैं, बरसात का मौसम है, गर्मी से तो राहत हमें मिली है, लेकिन बच्चे खेलने के लिए मस्ती का सुनहरा अवसर भी है। लेकिन इस मौसम में के साथ कई बीमारियां भी हमारे साथ आ जाती है। कारण है कि गंदा हम रहते हैं, कीट पतंगे हमारे साथ लग जाते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बच्चों, इस मौसम में कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमें वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। तो हमें इन सब हाइजीन से बचना है, ध्यान रखना है कि बारिश में गंदगी और नमी हमें नहीं बढ़ने दीजिए। अपने घरों में गंदगी ना फैलाएं, कभी गंदा ना करें, घरों में रोज़ सफाई कराएं। आप जो है अपना हाथ पैर धोएं, नाखून काटें और साफ़ सुथरा रहने की आदत डालें। बच्चों, आपके जो बिस्तर हैं और जो कपड़े हैं वो नियमित रूप से आप उसे धुलवाएं। मच्छर भगाने के उपाय अपनाएं। जैसे आप रात में अगर सोते हैं तो नेट, क्वाइन या रेपलेट लगाकर ही सोएं। इस मौसम में आपको पहनना क्या है, क्योंकि आप बहुत जल्दी गंदे भी कर लेते हैं कपड़े और गीले भी करते हैं, तो गंदे या गीले कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि इससे सर्दी, जुकाम, स्किन एलर्जी

और फंगस जैसा इन्फेक्शन आपको लग सकता है। हल्के और जल्दी सूखने वाला आप कपड़ा पहनिए। स्कूल या बाहर के लिए आप जाते हैं तो रेनकोट इस्तेमाल करें, छाता लें, वाटरप्रूफ जूता पहने और पूरी बाह वाला आप कपड़ा पहनना पसंद करें। गीले जूते या मोजे हम कभी भी ना पहने रहें। आपका जो खान पान है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। बच्चों इस मौसम में पाचन क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हल्का और पौष्टिक भोजन आपको लेना है। जैसे आपको अभी जो फल मिल रहे हैं मौसमी फल, आप उसका सेवन कीजिए। अमरूद, संतरा, सेब ये खाइए और गर्म खाना खाएं। गर्म खाना खाने के साथ साथ कभी कभी अपने खान पान में खिचड़ी और सूप का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, अक्सर बच्चे तो दूध पीते ही हैं, तो आप जब अगर दूध पीते हैं तो हल्दी वाला दूध अपने माता पिता से मांग कर पिए। हल्दी वाला दूध से आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। आप कभी भी अगर स्कूल जाते हैं या बाज़ार जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ, तो सड़क के किनारे मिलने वाला जो खाना होता है ठेला में, कुछ भी मोमो, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो सड़क के किनारे ठेलों पर मिलते हैं, तो ये सब खाने से आपको बचना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपने लंच में वाटर बोतल लेके जाते हैं तो पानी उबला हुआ ठंडा करके आप इसको ज़रूर पीना शुरू कीजिए। बच्चों इस मौसम में हमें योगा और डांस, आपको तो डांस पसंद है ना, आप तो बहुत अच्छे आप लोग डांस करते हैं, तो आप अगर योगा नहीं भी करते हैं तो डांस कीजिए। इससे आपका जो एक्सरसाइज है वो पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि खाली समय में आप किताब पढ़ें, कहानियाँ सुने अपने दादा दादी मम्मी पापा से, और अपने भाई बहनों के साथ क्विज या गेम जो होता है खेलते हैं वो टीम बनाकर खेलें, तो एक अच्छा आपको लगेगा। और इस मौसम में आप जब बाहर जा रहे हों तो कोशिश करें कि अपने साथ पानी का बोतल अपने घर से लेकर जाएं, और नहीं तो फिर बाज़ार से मिलने वाला ढंग का जो बोतल होता है पानी होता है उसे पिए, और इस मौसम में ठंडा पीना बंद कर दें। तो इस तरह से हम अपने छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें बच्चों, और हम स्वस्थ रहें। बरसात का पूरा आनंद लीजिए और खुश रहिए। हम बातें और भी करेंगे, मैं सुनते हैं प्यारा सा गाना।

तो बच्चों इसी गीत के साथ हमें बाल सभा से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, सुप्रभात। अभी आप सुन रहे थे बाल सभा बच्चों को संबोधित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं राग रंग

अभी आप सुन रहे थे राग रंग में शास्त्रीय संगीत, राग ठुमरी शुभा गुरुटु और पंडित अजय पोनहार से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने

0: स्थलों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC

0: दिल्ली जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकले।

0: nation's interests over personal gains, leads Hindustan Times. Meta told to give plan to revamp algorithms, writes the Tribune. CBI charge sheet names three NTA experts as key links in NEET UG 2026 paper leak, informs the Statesman. Ladakh logs 56.15% surge in July footfall of tourists, reads a top story in the Asian Age. The paper adds, PM push gave domestic tourism boost. Ladakh's tourism sector is experiencing one of its strongest phases in recent years, with visitor numbers climbing sharply and consistently throughout 2026. The Financial Express writes, no charges for UPI users, small merchants, clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the Statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks, and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care, and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, hills of fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो रहे हैं. ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का. सुनेंगे आपसे कुछ ही पलों में.
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम. डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान.
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें. साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें. मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं.
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना.
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका. पहले मुख्य समाचार. विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य में 2 दिवसीय महोत्सव. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल. कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सखुआ महोत्सव का किया उद्घाटन. प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील. आंदोलन कर रहे छात्रों की आज सरकार के साथ अगले दौर की होगी वार्ता. मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध. आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत. नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराने का आह्वान. और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान. गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी. और अब समाचार विस्तार से. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजन हो रहा है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे. प्रस्तुत है हमारी संवाददाता.

0: दाता की रिपोर्ट।
1: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची का मोराबादी मैदान जनजातीय संस्कृति के रंग में सराबोर है। दो दिवसीय महोत्सव में झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला की प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में जनजातीय व्यंजन, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कलाकृतियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ ही जनजातीय जीवन और संस्कृति पर आधारित फिल्म एवं मीडिया गतिविधियां युवाओं को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने का प्रयास करेंगी। महोत्सव के दौरान झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आदिवासी जीवन और संस्कृति पर आधारित शॉर्ट फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही पैनल डिस्कशन और फिल्म मेकिंग पर मास्टर क्लास आयोजित होगी, जिससे युवाओं को फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के चुटिया स्थित 2100 महादेव स्थान में रांची नगर निगम द्वारा आयोजित सखुआ महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को आवश्यक बताते हुए प्रत्येक नागरिक से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने रांची नगर निगम के सभी 65 वार्डो में करीब 1,00,000 सखुआ के पौधे लगाने के संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि सखुआ झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: राज्य में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। सरकारी पैनल के एक सदस्य ने बताया कि वार्ता दोपहर करीब 12 बजे होगी। इससे पहले पैनल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई बातचीत में अब तक हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया। सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अब तक हुई बातचीत को सकारात्मक बताया।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते, और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची सदर अस्पताल में भर्ती बीमार आंदोलनकारी छात्र से भेंट की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर सिविल सर्जन से समुचित इलाज करने एवं उसके स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी सदर अस्पताल जाकर पीड़ित छात्र का हालचाल जाना। संवाददाताओं से बात करते हुए आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षाओं के परिणाम खंड खंड में जारी करना कई सवाल खड़े करता है।

0: बताया कि जो परीक्षाएं ली गई हैं उनका पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया जा रहा है। ऐसा तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं था कि परीक्षा में पार्ट पार्ट रिजल्ट दिया जाता है। सहायक शिक्षक में इन्होंने आवेदन दिया था, अन्य परीक्षाओं में आवेदन दिया था, पर रिजल्ट निकालना है, मन साफ है आपका तो फिर एक बार एक साथ एक छात्रों को रिजल्ट दो, पार्ट पार्ट में देने का क्या मतलब है।
1: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में 3 दिवसीय 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने छात्रों और युवाओं से देश की जरूरतों के अनुरूप नई तकनीक और समाधान विकसित करने का आह्वान किया।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल @airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
1: बड़ी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
2: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
3: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
2: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। धनबाद जिले के छाताबाद में शुक्रवार को हुए भीषण भूधसान के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। भूधसान की वजह से करीब 20 घर जमींदोज हो गए हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने भूधसान स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बीसीसीएल को सर्वे और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्देश दिया। धनबाद पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए देश भर में साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर दी।
4: शीतलपुर गांव है जो कालूबतान क्षेत्र में, कालूबतान और भलियापुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती एरिया में सिचुएटेड है। उन लोगों का नाम से बहुत सारा सिम्स इश्यूड है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली है। कुछ लोगों का नाम में 14 सिम, कुछ लोगों के नाम में 20 सिम, 15 सिम, 11 सिम, ये सब अवैध।
0: सरायकेला खरसावां जिले में कपाली ओपी पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूछताछ में एक बड़े तस्कर की जानकारी मिली है। नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रांची मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा, तेज हवा चलने, गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विश्व आदिवासी दिवस और जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों के आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड आदिवासी महोत्सव आज होगा आगाज, मोरहाबादी मैदान सजकर तैयार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार का रुख, आज फिर होगी वार्ता, फैसला संभव। दैनिक जागरण लिखता है, निर्णायक मोड़ पर आंदोलन, आज फिर वार्ता। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुठभेड़ में प्रिंस खान का गुर्गा घायल, 3 और गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य में 2 दिवसीय महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सखुआ महोत्सव का किया उद्घाटन। प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील। आंदोलन कर रहे छात्रों की आज

कार के साथ अगले दौर की होगी वार्ता। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराने का आह्वान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: graça.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस की कड़ी संख्या 6।
2: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीज़न कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे एल्डरली थे उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन

कर रहे हैं, तो एक कल्चरल कंटिन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को,

0: आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमज़ोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी हैं जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सकें। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहाँ की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज़ हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है, तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं, functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं, तो उनको रीएम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके, ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम कर

0: करते रहें, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिज़ाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स है लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा, वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूँढूं या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफ़र को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं. एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी. सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है. बस ज़रूरी है अवेयरनेस की. हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पर काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी.
1: You had been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कड़ी संख्या 6। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: पलामू।

जो हर पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में हम बातें करते हैं आज के सुविचार के। आज के हमारे सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र हैं। तो इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पल हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पलामू, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं कि इस मौसम में हमें अपने सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। बरसात के दिनों में नमी और गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे बचने के लिए घरों की नियमित सफाई का ज़रूरत होता है, ताकि हम अपने घरों के आसपास मच्छर और घरों में मच्छर के साथ साथ फंगस ना पनपने दें। फर्श की जो सफाई होती है उन्हें फिनाइल या डिस्फ्रेक्ट मिलाकर करें। पानी बिल्कुल जमा न होने दें। सीलन रोकने में कपूर या नीम को जरूर रखें। हमेशा उबला पानी हमें पीना होगा। अभी जैसा मौसम चल रहा है और साफ पानी, बासी या खुला खाना खाने समय बचने होंगे। सब्जियों फलों को धोकर इस्तेमाल करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने खान पान के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरत है कि उबला हुआ खाना खाएं। इस मौसम में तेज तेल और तेज डाली हुई मसाले से खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो पेटों पे पड़ता है। हमारे जो पाचन शक्ति होती है इस मौसम में थोड़ी गड़बड़ रहती है। और हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सलाद का भरपूर आनंद लेना होगा खाने में, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा जो एनर्जी वो बना रहे। ऐसे मौसम में हमें हल्का हल्का खाना खाना चाहिए, और ख़ासकर रात में हमें अभी जैसा मौसम चल रहा है हल्दी वाला दूध का सेवन नियमित रूप से करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हम सफाई की अगर बातें करें तो रात में भी हमें अपने जो बिछावन उन्हें झाड़ कर अच्छे से साफ करके उसे रखें और देखें, क्योंकि अभी जो मौसम है इसमें कीड़े फतेंगे, कीट और सांप जो होते हैं बहुत अधिक पनपते हैं, बहुत अधिक आना इनका शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने घरों के आसपास की सफाई रखें, घरों की सफाई रखें और खुद भी साफ रहे, तभी जाकर हम बरसात के दिनों का आनंद ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पिलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का और संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डालडेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आज आपको फिल्म जुनून, आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं और जान की कसम, इन सब फिल्मों के गाने आपको सुनवाते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत में, फिल्म जुनून, आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं के गानों को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन और उनकी पत्नी उषा वेन को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई

आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ओवर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुडे. द मेट डिपार्टमेंट हैज इशूड अ वार्निंग ऑफ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स. ओडिशा इज विटनेसिंग अनदर स्पेल ऑफ वाइडस्प्रेड रेन विद अ फ्रेश लोअर प्रेशर सिस्टम ओवर द बे ऑफ बंगाल ट्रिगरिंग हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट. Indian shuttler Ashmita Chelli have produced a superb comeback to win the Korea Masters 2026, beating China's Han Chian Ki in the women's singles final this morning. The Assam shuttler recovered from losing the opening game to prevail in 53 minutes and claim her first BWF title. And India's Sagnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold in the under-31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in China. And that is the end of this news bulletin.

अब है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय है बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हाँ, जिसे लेकर आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त कुसुम। आपकी पसंद में सुनेंगे हम आपकी पसंद के गीत और शामिल करेंगे उन बातों को जो आपने आज सुबह पहली सोच आपके मन में आई हो। जी हाँ, आप सभी को बताना है कि आज सुबह उठते ही आपने क्या सोचा, और इसके लिए आप अपनी डिजिटल चिट्ठी, जी हाँ, अपना संदेश आप हम तक भेज सकते हैं। जरिया है, जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com, iprediodelhi@gmail.com पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं कि पहला कौन सा ख्याल सुबह उठते ही आपके मन में आया। जी हाँ, और स्वीकार कीजिए इसी के साथ अपनी दोस्त कुसुमलता का प्यार भरा नमस्कार। और जब कार्यक्रम की हम शुरुआत इतने अच्छे मन और इतने अच्छे मूड से

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीज़ें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे। आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर

0: पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
1: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है।
0: जी
1: जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे
0: जी
1: मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी
1: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है,
0: जी
1: उस लेवल पे करना है। वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू हो
1: आती है,
0: जाती है जी।
1: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे
0: इज
1: डांसर,
0: अ वेरी गुड डांसर।
1: वेरी
0: यस
1: ग्रेसफुल।
0: यस
1: उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
0: जी
1: और
0: वो भी
1: कमल
0: बहुत
1: मास्टर जी
0: अच्छे,
1: बहुत कमाल,
0: बहुत
1: उन्होंने
0: अच्छे
1: एक ट्रेंड, जैसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी,
1: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का
0: वो
1: स्टेप
0: सब
1: था,
0: कमल जी का
1: वो
0: दिया होगा।
1: कमल
0: जी
1: जी
0: जी
1: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
0: जी
1: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
0: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
1: बिल्कुल,
0: है।
1: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
0: हाँ
1: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
0: क्या डायलॉग
1: हाँ, मेरे लिए
0: है।
1: वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
0: जी
1: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
0: जी
1: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
0: बिल्कुल।
1: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
0: हाँ, क्योंकि
1: इसलिए
0: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
1: बिल्कुल
0: फीमेल वाले
1: अदायगी
0: एक्सप्रेशंस
1: मुझसे
0: आप ही
1: मिलेगी।
0: दोगे।
1: डुएट सॉन्ग
0: बिल्कुल
1: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
0: हाँ,
1: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
0: क्या
1: असिस्टेंट थी
0: जी।
1: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
0: हाँ
1: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
0: जी
1: और करके दिखाना।
0: जी
1: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
0: जी
1: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
0: और गणेश
1: और उन
0: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना
1: शबीना खान। तो अब
0: खान।
1: जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
0: मैं
1: जो
0: ही सिखा रही थी
1: मैं
0: उस
1: ही,
0: समय।
1: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
0: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
1: मैं
0: मैंने
1: मजेदार
0: असिस्टेंट
1: बताऊं थोड़े
0: कोरियोग्राफर।
1: से, लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
0: जी
1: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी तेरे
0: है,
1: पीछे
0: क्या
1: पीछे
0: बढ़िया
1: पीछे
0: गाना
1: पीछे।
0: है।
1: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
0: जी
1: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
0: नहीं,
1: थी।
0: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
1: उस वक्त
0: तो।
1: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
0: जी
1: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
0: बिल्कुल, ये
1: आपकी
0: गाना
1: मर्जी
0: हम
1: है।
0: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
1: हाँ
0: ने
1: जी,
0: गाया हुआ
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
1: बिल्कुल
0: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी है उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
1: ठीक है।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं
0: जी।
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ
0: हाँ।
1: और अरबाज खान को
0: हाँ।
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
0: अच्छा।
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ।
1: So, बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी,
0: ऐसा मुझे भी समझ नहीं आया था।
1: हाँ, आप देखिए गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है। तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट, पर्सनालिटी, बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त
0: जी।
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली, मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी के साथ हो जाते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो एक गाना था, उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो का मटकी फोड़ने वाला गाना,
1: मटकी फोड़ने वाला गाना, वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइट शॉट। तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले, तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी जी जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने।
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत।
1: तो मेरे असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, कॉलेज जाना शुरू किया, काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ अपने बहन भाइयों की पढ़ाई।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ?
1: हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी, मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है
0: जी।
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: जरूरत थी और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे,
1: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं।
0: अच्छा।
1: कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा, अच्छा कठिन ही पढ़ा।
1: हाँ,
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे।
1: तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
0: ये बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, यही मैं चाहती थी कि आप के जरिए बता।
0: तो हमारे कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स की मैथ्स भी होती है.
1: बिल्कुल. इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी.
0: कॉमर्स भी इजी नहीं है.
1: हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास की, मतलब मैं खुद पढ़ाई में अच्छी. हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो. तो जो पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है. जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का.
0: जी.
1: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है.
0: जी,
1: वो आज भी मेरी लाइफ में है. इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है.
0: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी.
1: बिल्कुल.
0: और वो सब करके आप हर फील्ड में आप जीती.
1: बिल्कुल. और इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है.
0: जी.
1: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है. लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए. शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो, तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके.
0: क्या बात है.
1: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म.
0: सुकून की नींद नहीं, पेट भर के भूख नहीं.
1: बिल्कुल.
0: और एक अलग बेचैनी.
1: ये बिल्कुल. मैं अपने
0: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना.
1: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए.
0: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है. थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है.
1: बिल्कुल.
0: कुछ जाग रहा है.
1: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा.
0: जी.
1: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है.
0: इतना होने के बाद
1: ये भूख ही मुझसे करवाती है. तो मैं सर.
0: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए.
1: बिल्कुल. तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ जब कोरियोग्राफी शुरू की.
0: जी.
1: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना. लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है. और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना फ्लो के साथ चलो. एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ. अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए. तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया.
0: जी.
1: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे.
0: अच्छा.
1: हाँ जी. तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है. तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए. हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी.
0: अच्छा. प्रश्न ही होता था शबीना है ना के लिए. हाँ.
1: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना. हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का. तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा.
0: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर जाके वीजा लगवा रहे.
1: वीजा. और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम. अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना. मतलब वो लेवल का. शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता.
0: क्या बात है.
1: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी कर रही थी.
0: क्या खूबसूरत गाना.
1: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी. असिस्टेंट डेज की बात है.

0: तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो, उसको ब्रेक देते हैं। वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल। और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ। मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था, इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म। अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी।
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ, तुम्हें बता देगा, एक गाना करो, मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था
0: बहुत
1: वो।
0: फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं
1: जी
0: गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया। वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: हाँ, वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है। सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो।

0: तो राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट. एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं.
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है. जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है.
0: हाँ. तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है. मम्मी बोले करो बेटा.
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो.
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल.
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया.
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक.
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं.
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं.
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो. तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे. फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई.
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं.
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा. और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं. आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी
0: तो
1: जाएगी वो.
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है.
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए.
1: बहुत खूबसूरत गीत है.
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी.
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है.
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं
0: जी
1: और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि
0: बिल्कुल.
1: कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें.
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी.
0: देखेंगे और सुनेंगे
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आपके लिए गाना था जलते दिए.
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनके
1: जी
0: तो सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो.
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी.
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है.
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ.
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे.
1: खुद जलाएंगे यानी.
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो.
1: एलईडी वाले.
0: ही
1: जी
0: सेड नहीं. उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे. ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं.
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए. तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस
1: बढ़
0: गाने
1: जाते
0: की.
1: हैं का ये काम ऐसा
0: हाँ
1: होता
0: तो उसमें
1: है, ये
0: दिए जलाने में मैं
1: ऑथेंटिसिटी
0: भी होती
1: होती
0: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं.
1: जी
0: आपने जो
1: उसके साइड
0: सवाल
1: से ही
0: किया,
1: पट्टी
0: साइड
1: पे भी
0: में
1: जल रहे हैं. जी
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं.
1: जी
0: और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
1: हाँ और वो
0: तो वो
1: बहुत लाइट
0: चलकर,
1: नेट की
0: हाँ
1: साड़ी है वो.
0: तो
1: जी
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर.
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
0: नहीं,
1: रही है और
0: वो
1: वो.
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
1: जी
0: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले वो हमारे सेट पे होते हैं.
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता. फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट्स,
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है.
0: हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है. जैसे
1: जी
0: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है. घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए.
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: जरूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: जरूरी.
1: चाहिए.
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
1: बहुत
0: कोमलता
1: रिच
0: से
1: सॉन्ग है,
0: दर्शाया गया.
1: बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये.
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल.
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए. तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए.

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे, सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो

0: ये सोशल मीडिया वाली वो भी बड़ी काम आ जाती है। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो है, एक्ट्रेस जो है, अभिनेत्री जो है, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा है, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता
0: दी।
1: रेखा जी हमारी उमड़ाओ जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी, इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कम्फर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता है।
0: इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल, आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी। जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है, सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्क्ड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी, और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर, शी वर्क्ड रियली हार्ड। रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए,
0: के साथ में
1: बिल्कुल शकुंतला बन गई थी वो। बिल्कुल, उसका
0: ऐसा ही,
1: यही
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वाज वेरी गुड,
1: वेरी ग्रेसफुल,
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा,
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है, कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क्ड हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनकी कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
0: जी।
1: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
0: जी।
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट। और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
0: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को, उन्होंने अगर मान के उसके जैसा,
1: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
0: जी।
1: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजातिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
0: जी।
1: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेशाचार्य जी को निभाया।

0: मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया,
1: जी
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड के मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो

0: जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी बिल्कुल,
0: तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान,
1: हाँ
0: उन्होंने जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी,
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह,
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ,
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को मैं करके दिखाती हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि
1: हाँ
0: उस कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके असिस्टेंट्स,
0: एचओडीज
1: एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी,
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे, वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे। थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरी इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस,
1: हाँ
0: उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो
1: हाँ
0: रहा है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है,
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज,
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता
1: नाचने के लिए नहीं, बाकी
0: है, बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आपके ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विद योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
1: अरे
0: मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण क्षति के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: नमस्कार। और वंदे मातरम, वंदे मातरम का ये 150वां जन्म वर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमी। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे ईश्वर चंद्र गुप्त।

और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास, ये छोटा गांव है। अश्विन शुद्ध अष्टमी के दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत, वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंद मठ कादंबरी में हुआ। आनंद मठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंद मठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक रणगर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रणगर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली और वो दिन था 7 अगस्त 1905। बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली लेकिन सेंसॉर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कान्हेवे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हेवे 1909 फिल्म से।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जनप्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत

केवल दो पंक्तियों का प्रयोग उसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबुज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्लवो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर वरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। दिग्दर्शक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म। हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी, उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रण गीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौलिक, इनकी धुन। पंकज मौलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौलिक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्ण राव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष, ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीत का है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जीएम दुरानी है। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त जीएम दुरानी, संगीत का ज्ञान दत्त।

ये संगीत रचना है तिमिरवरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिरवरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

यार रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप

उनका बहुत सारे वैशिष्ट्य है जिसमें दिग्दर्शक है हेमेन गुप्ता। हेमेन गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आत्मस्वरण से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बारी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है आनंद मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सौतन से।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आए बाहर आई फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

5.40 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1 बजने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिश करता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP

0: सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की दी बधाई, कहा समृद्ध जनजातीय विरासत हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान, शहीदों को किया नमन। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में देश भर से आए जनजातीय कलाकार देंगे प्रस्तुति, कई कार्यक्रम का भी आयोजन। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में आंदोलनरत छात्रों से सरकार की आज फिर होगी वार्ता, अनशन कर रहे छात्रों की मेडिकल टीम ने की जांच। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू, रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति और एकता की दिखी झलक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अधिक प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृहमंत्री ने पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान यह बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है, ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने लिखा है कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय विरासत हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी समृद्ध संस्कृति एवं लोक कला हमारी अमूल्य धरोहर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है कि झारखंड की धरती ने दुनिया को ऐसा जीवन दर्शन दिया है जहां प्रकृति पूजनीय है, समुदाय सर्वोपरि है और संस्कृति जीवन का हिस्सा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस महोत्सव में झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य संगीत और कला की प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में जनजातीय व्यंजन पारंपरिक वेशभूषा हस्तशिल्प और कलाकृतियों के स्टॉल भी लगाए गए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। आंदोलनरत छात्रों से सरकार की अब से थोड़ी देर में तीसरे दौर की बातचीत होगी। अब तक हुई दो राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। वहीं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्रों ने सरकार पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाया है।
2: अब देखना इस चीज को है कि आज वो किस पर इतना बात करते हैं, क्या हम लोग मांगे पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग कल विधानसभा घिरा भी है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ये आश्वासन कब तक चलेगा? क्या आप हम लोग जान लेना चाहते हैं? हम लोग आज 6 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे, कभी आप एक दिन रखकर देखिएगा कैसा लगता है। अगर आपके बच्चे एक दिन भूखे होंगे ना, तब तड़प जाइएगा। वैसे मेरी माँ बाप भी तड़पते होंगे, लेकिन सरकार को दिखता नहीं है।
0: इधर अनशन पर बैठे छात्रों की मेडिकल जांच की गई। चिकित्सक ने बताया कि अभी छात्रों की स्थिति सामान्य है, लगातार उनकी निगरानी की जा रही है।
3: वेट कम हुआ है, बाकी अलर्ट है, अभी स्टेबल है, लेकिन ज्यादा यदि कुछ दिक्कत बुझाएगी हम लोग मेडिकली, तब इन लोगों को रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल। हम लोग ऑन स्पॉट दे रहे हैं। दो तरह की बात है, एक तो कि जब सीरियस कंडीशन होगा इनको बिना कहे हम ले जाएंगे, और दूसरा जो कंडीशन अभी है प्रेजेंट में, ऐसे नॉर्मल पेशेंट को भर्ती होना चाहिए, परंतु ये अभी जाना नहीं चाहते।
0: जमशेदपुर में पिछले दो दिनों से चल रहा आजसू पार्टी का छात्र महाधिवेशन संपन्न हो गया। इस मौके पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बिलोटाड़ और देवपहाड़ी गांव पहुंचकर वज्रपात से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को आपदा विभाग की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश स्वतंत्रता की गौरवशाली 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी कड़ी में रांची में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मोरहाबादी से शुरू होकर अल्बर्ट टेका चौक तक गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। श्री सेठ ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना भरना है।
1: आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
2: देखो, तिरंगा हमारी आन पान और शान है, और आन मान शान तिरंगा हाथ में लेने से ऊर्जा आ जाती है। और जब भारत माता की जयकारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो जो ऊर्जा का संचार होता है।
0: तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर लोगों से अपने घरों में एक एक तिरंगा लगाने का आग्रह किया। विधायक नीरा यादव और रांची की महापौर रोशनी खलखो ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। धनबाद नगर निगम ने करीब 141 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शहर की सूरत बदलने की योजना बनाई है। इस संबंध में कल निगम की बोर्ड मीटिंग हुई। महापौर संजीव सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के बाद निगम की क्विक रिस्पांस टीम को भंग कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर सभी 55 वार्डों में 15-15 समर्पित सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र के कोनमेरला पंचायत स्थित सौंडी डीपा गांव में जंगली हाथी के कुचलने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोलेबिरा विधायक ने पूरे मामले में वन विभाग को लापरवाह ठहराते हुए मामले को सदन में उठाते हुए मुख्यमंत्री से स्थायी समाधान की मांग करने की बात कही।
3: हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि वन विभाग से क्या आप अपने लोगों को यहाँ से लगा के इनको यहाँ से हटाइए, इनका जहाँ वन अंतरायणी है वहाँ तक इनको ले जाइए। मैंने सदन में भी इसको लेकर कई बार रखा है, लेकिन वन विभाग पूरी तरह से उदासीन है, गंभीर नहीं है।
0: झारखंड में आज मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों को बदला। 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की दी बधाई। कहा, समृद्ध जनजातीय विरासत, हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान, शहीदों को किया नमन। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में देश भर से आए जनजातीय कलाकार देंगे प्रस्तुति, कई कार्यक्रम का भी आयोजन। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में आंदोलनरत छात्रों से सरकार की आज फिर होगी वार्ता। अनशन कर रहे छात्रों की मेडिकल टीम ने की जांच। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश

देशभर में शुरू, रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति और एकता की दिखी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:21 हो चुके हैं। इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ठुमरी खमाज। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान
3: केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता है तो है, लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं, कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई? तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आपकी पहेली है।

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे, और दिखाई देता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियां हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नजरिए से, तो प्रदेश है यहाँ पर हैं अलग अलग। तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियां नजर आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है चारों ओर, छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम

के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा है, फिल्म की किताब में सुना रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओ जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओ जो जोंगू क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियां हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल

के सफेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है, तो नैना क्यों बरसे, बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छान कर चाय के पानी में घोल कर रात में रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहां के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोता, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नजर नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाए तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नजर आता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा, अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है, तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताजा कर सकते हैं, गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओ। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की

लगता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैसनराम दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओं। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलग है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर लिपटी, ये धरती नीले आसमान को ओढ़े, ऐसे प्रतीत होती है।

हेमा मालिनी पर फिल्म आया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहां का नजारा। जी हाँ, पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहां इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ और संगीतकार।

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोताओ, वो रावण हत्था है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं है, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

0: सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chaliha clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. The Har Ghar Tiranga campaign

0: खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत

0: प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन पोस्ट के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और

0: आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएन विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल है। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और

0: चतरा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 2:30:20 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: समो, वो कहानी सुना हो ना, और तुमने कहा था
4: कहानी?
3: हाँ,
4: कौन सी कहानी?
3: ओ जब हरिप्रसाद किचन में गिर पड़ा था।
4: हाँ।
3: कहानी था ओ, ओ लोमड़ी की क्या?
4: क्या वो वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
3: ओ, सुना हो ना।
4: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

रवि ने इस गीत को सर्वद किया। साहिल लुधियानवी की रचना थी महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संयुक्त रूप से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। इधर बोकारो में भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शिबू सोरेन स्मृति भवन में आयोजित आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक अंदाज में हुआ। इस अवसर पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक, विधायक श्वेता सिंह और उपायुक्त अजय नाथ झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई है। बातचीत का ये छठा दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को सोलहवें दिन भी जारी है और छह प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जांच या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की समिति से कराई जाए। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में हुए नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधानसभा में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे श्री सेठ ने आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की और इनके आंदोलन को अपना

0: समर्थन दिया। मंत्री ने राज्य सरकार से इन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द न्याय और अधिकार देने का आग्रह किया है।
1: ये झारखंड के युवा हैं, उलगुलान कर चुके हैं। आपको सीबीआई जांच कराना ही होगा, ईडी की जांच कराना ही होगा, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अब सर्वोच्च न्यायालय। देश इन युवाओं के साथ खड़ा है। झारखंड के बच्चों ने देश और दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो अधिकार होता है, कैसे अपनी आवाज को बुलंद करना।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि बातचीत और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकाला जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी ने आज जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। आम बागान मैदान से शुरू हुई ये यात्रा साकची गुलचक्कर होते हुए जेएनएसी गुलचक्कर पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तिरंगा महज तीन रंगों का ध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान और शान है। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। राजकीय श्रावणी मेला की कल दूसरी सोमवारी को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस बना हुआ है। जिले के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। इधर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सीसीटीवी, लाइव फीड और कम्युनिकेशन सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
2: जो तैयारियां अभी तक की हैं उसको हम लोगों ने रोबस्ट रखा है, और साथ में जहां जहां मैक्सिमम भीड़ होने की संभावना है वहां हम लोगों ने एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट और बहुत ही बढ़िया से टीम्स की काउंसलिंग कर ली है, और बहुत क्लियरली उनको एक एसओपी बता दिया गया है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और कैसे उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदाना का इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहां ने। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद, इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग किसी एक फूल का नाम लो।
1: आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
2: जज की आवाज
1: के बारे में आप क्या जानते?
2: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा

0: पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
1: प्रीतम सोनी
0: कौन?
1: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
0: नहीं,
1: लेकिन क्या ये सच है?
0: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनता किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
1: क्या आप अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे, झूठ छुपाओगे?
0: नहीं,
1: बोलो।
0: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
2: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
3: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगते हैं वो।
2: क्या मतलब?
3: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
2: ये बात और कोई भी जानता है?
3: नहीं।
2: पाठक भी नहीं?
3: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा, मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
0: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर, वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कामनी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं।
4: ओ, ये कौन आमरा इस समय कौन है?
5: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
4: क्या
5: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
4: ओह हाँ।
5: नमस्कार कामनी जी।
3: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
5: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
4: तुम जरा जल्दी आ गए।
5: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कॉपी। ठीक है तो मैं जाऊं।

0: सिगरेट पीजिए, जल्दी भी क्या है?
1: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं।
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
0: बैठिए बैठिए, क्यों जल्दी है?
1: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
2: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
1: हमारी निजी बातें थी।
2: निजी बात? ओ हाँ, समझा। आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ेगी।
1: छिप छिप कर बातें सुनते हो, बदतमीज।
0: क्या हुआ केशव जी?
2: जी
0: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
2: जी जी, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
1: क्या? तुम जानते हो?
2: जरूर जरूर, बहुत अच्छे तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
0: ओ, वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
2: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
0: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
2: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
0: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
2: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
1: आत्मकथा लिख लाए हो?
2: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
1: ये क्या झमेला है?
2: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
1: क्या कहा?
2: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं,
1: तो तुम जानते हो?
0: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
2: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछड़े में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
0: हाँ हाँ पढ़िए ना।
1: नहीं, पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
2: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
1: अच्छा?
2: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
1: उम्र क्या है?
0: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
2: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
1: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
2: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
0: और क्या?
2: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
1: क्या
2: के शेखर इन पर जान दे।
1: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
2: जी गोरा।
1: रंग गोरा है?
0: गोरा।
1: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
2: अच्छी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ
1: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
2: अरे अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
1: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
2: अच्छी बात है।
1: और इस तरह अपने पास बैठा कर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेश

0: बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था, पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
1: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
2: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
3: हाँ भाभी।
2: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
3: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
2: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदलो?
3: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
2: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
3: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
2: वो अफ्रीका से लौट आया है?
3: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो, इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
2: हाय, कैसा है?
3: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
2: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
3: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं
2: अरे
3: आता।
2: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
3: भाभी, आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एक-एक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
2: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी, प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
3: भाभी, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
2: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था।

0: उसने केशव ठाकुर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: हाँ जानता हूं, लेकिन ओशी अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
3: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में छूट दिया। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे।
2: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
0: पाठ्य, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
2: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
0: नहीं, उसका एक दोस्त है।
2: कैसे परेशान कर रहा है?
0: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
2: मतलब
0: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
2: और तुम ये सब ना मानो
0: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
2: उस आदमी का नाम क्या है?
0: शेखर खोसला।
2: शेखर खोसला?
0: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
2: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
0: क्यों?
2: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
0: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो। शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
2: एक शब्द भी और कहो तो गला घोटूंगा।
0: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
2: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देशपांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
2: यह आवाज, कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध बुध खत्म कर दिया।

0: वाले को तरोग की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
1: केशव जी,
0: कहे जी,
1: आप

0: और क्या?
1: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
0: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
1: बड़े गहरे हैं कवि जी,
2: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में, शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी जलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था। और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
1: सुनिए कवि जी,
2: जी
1: कल शो है ना?
2: हाँ।
1: कल पाठक में सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है। क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
2: जी।
1: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
2: कामनी जी, कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
1: कवि जी।
2: जी जी।
1: आप आ गए?
2: मैं बिल्कुल आ गया।
1: ये पहले पंक्ति के तो टिकट मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
2: टिकट किस लिए?
1: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
2: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
1: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखूं मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखूं आपके उस खूबसूरत चित्चोर को।
2: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
1: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
2: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा दी। आज जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
3: शेखर खोसला
2: जेल की कोठरी।
3: हाँ, पूरा सच।
2: बकली
3: सच के सिवा कुछ नहीं।
2: शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
3: शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ, इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना।
1: रात को गरमाई मिली है जिसे तुम गाया प्रेमी चट्टो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते? पर शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्तलियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में।

कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें, कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों, चुप क्यों शिखर? जवाब तो, उससे बातें करो, मुझसे बातें करो।

0: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: ये है विविध।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जीएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई। बातचीत का ये छठा दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन भी जारी है और 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में हुए नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधानसभा में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे श्री सेठ ने आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की और इनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी ने आज जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। आम बगान मैदान में शुरू हुई ये यात्रा साकची गुलचक्कर होते हुए जेएनसी गुलचक्कर पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है। अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो

0: चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बात का सब मेरा चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो। ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने, और पूरा ही वो बदल दिया उसमें सारे कैरेक्टर्स। वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी मियां बीबी है, या ये जो डालडा का टमड़े लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
0: आपको मालूम है वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियां मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात। हाँ। वाह।
0: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है। हाँ। वो भी बताइए।
0: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
0: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता, या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता, तो मैं उनको फोन करती थी कि गुलजार साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ, और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2.50 रुपए हो गए हैं अभी तक, वो कुछ 88 चार्ज होता था। क्या अब
1: एक बार की सलाह पे 88? यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
0: हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए?
0: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
1: शरारती भी
0: और दूसरे पे हावी होने वाला। हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट है, मजा आ गया। कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलानिम का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे। अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम वैसे दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर रोल्स।
1: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई
0: और दीप्ति को तो लिया।

0: आई था चश्मे बहुत दूर बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर. दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है. अरे बाबा बाबा वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई लेकिन दीप्ति को भी देखो ना तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी और इतना प्यार से वो एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड है और आप क्या काकू बन के रहती है. तो दीप्ति के हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ ऐसे इतना वो प्यारी प्यारा से मासूम.
1: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं. अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है वो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है कमाल कमाल
0: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने. वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है. इट्स ब्यूटिफुल. इवन आई लव दिस वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स टोटली माई एंटायर करियर. इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स विच आई फील आर रियली रियली गुड That's one of them.
1: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है. अच्छा फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी.
0: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती. इट डिपेंड ऑन द फिल्म. जैसा कि दिशा का पूछो तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल.
1: ओ गॉड
0: मैं मजाक नहीं कर रही. मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही. थोड़ा थोड़ा
1: प्रोसेस
0: ऐसे नहीं,
1: था,
0: नहीं. लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है. तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया. फिर और कुछ ऐसा ही हुआ. फिर और कुछ इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर. और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी और फिर 7 दिन में लिखी. तो टेक योर चॉइस अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो.
1: वाह ये भी बात है. और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था. वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना. तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में
0: इसमें वो पटकथा
1: का हिस्सा बनती जाती है.
0: अरे ये रस्सी जाने दो लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो क्या है कौन सा सीन. तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. इससे और क्या चाहिए. अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन. वो देखा तो लिख लिया क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे. वो क्रिकेट खेलना चाहते थे. वो उनका गेंद क्या है एक रिंग है और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब. और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन. फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा नॉट वेरी हेवी. तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है. तो ये बॉलर फेंकता है ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है वो बॉल फेंकता है ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
1: क्या
0: मारता है तो या तो सिक्सर या तो कैच.
1: वाह वा.
0: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए. अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इट इज सो ब्यूटिफुल. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया.
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
0: जी.
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी. मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो और वो ये है कि ये जो चौल है मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली.
0: नहीं क्या मजे की बात है ना. मुंबई की खास चौल पुणे में. दिस इज फिल्म यार यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी एवरीथिंग इज फेक. तो ये भी फेक ही है. चौल भी फेक है हमारी लेकिन चौल फेक नहीं है. पोजीशनिंग फेक है.
1: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं.
0: नहीं ना बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा. हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते. मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक उधर थाना तक कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम. तो कई चौल तो होती थी. वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे बेतहाशा पैसा मांगते थे या वहाँ सुना की कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा ज्यादा, कई चालें थी इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ

0: तक ही भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं बम्बई की चौल पूना में क्यों। तो कहता है अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पूना गए और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुंगिया चौल करके केसरी वाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेड और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से
1: बैलुस्टेड।
0: और फिर इतनी वो सुंदर चौल और वो क्या चौल वाले और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
0: प्यारा लगा मुझे, अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी। कौन

0: आप दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ, सबसे महत्वपूर्ण फिल्म हाँ, है ये
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परूलकर पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलास राव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई
0: जी,
1: उनके गाँव में नायगांव गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखेगा सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर,
0: इंसान की जुझारूपन की मिसाल,
1: जुझारूपन की क्या मतलब किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
0: जी,
1: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं, जो कुआ मतलब उसकी सौत।
0: बिल्कुल।
1: तो, और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
0: जी।
1: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
0: जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल
1: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही, दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा, गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम, हाँ बम्बई में रहकर
0: जी।
1: मैंने कहा नहीं, नहीं सच्ची नहीं।

0: मालूम मुझे क्या गाला, मतलब कहते चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहां वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई और गाढ़ा देखा मैंने। गाढ़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा सकरा,
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाढ़ा मतलब हॉल कमरा हा? लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में। तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठकाठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल, और बहुत सारे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग मेरे मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का, वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है? कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो उनके साथ शामिल के लिए गए थे निपानी और वहां से लौट रहे थे, और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी-5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम,
1: वो आपने खुद लिखा है?
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी।
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी।
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि।

0: लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लिया, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था, लेकिन उसने हराया। यस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए। नहीं, वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हो तो देखो, तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट, ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला
0: हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम, बाकी अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो वो निकल गया फिर अब चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन था,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने

0: का सवाल ही नहीं था और वो
1: हाँ
0: ये कर सकता था, बिल्कुल कायदे से कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो, देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे, देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज़ हमेशा वाली, काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म। मतलब
1: क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, और मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुद्रा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, अद्भुत।
0: एंड नाना लॉफ्ट एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है, उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, हाँ, इसलिए आप बच गई,
0: हाँ,
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं। मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी, जी।
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया,
0: वेरी
1: ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी। और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़ और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
0: माथे पे लगाती है,
1: फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है
0: कीचड़
1: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो, और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को वो कहती है कुआं माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
0: कितना सुंदर
1: तो दैट्स सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म एंड इट कीप्स you absorbed and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense, I mean you know usme bahut hansi mazak bhi hai, bahut human give and take hai, bahut cheeze hai, main sochti hu usme sachmuch maine apna sab kuch dala hai disha
0: ji। ek aur kisi drishy ki baat aap karna cha rahi
1: thi, ha wo drishy bahut hi kamal ka drishy hai ki ek din aisa aata hai ki nana bhi ab pahunch gaya hai, nana matlab vasant aur suma ab dono dost bombay pahunch gaye hai, aur vasant ki bichare ki nayi shaadi hui hai lekin usko chhodna padta hai gaon, paise hi nahi hai, aur wo तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाते।

0: था यहाँ वगैरह वगैरह, तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती, उसकी बीवी वो आती है, और एक शाम को फिर वो कमरा उसका, हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर,
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। बोलते हैं कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर। और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट।
1: जी
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी, बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और इसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है। और वो कहते हैं कि 40 मंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, शीशे और कुछ तो चारा होगा, तो बसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली, तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो
1: जी
0: कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहता है लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था
1: जी
0: क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, हाँ, तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, हाँ, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी, तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोनों लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है, और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले,
1: अद्भुत
0: मतलब ये
1: अद्भुत
0: या क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स।
1: क्या बात है, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस
0: राजश्री सावंत थी,
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो
0: हाँ।
1: इसलिए मैं चाहता हूं कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपिया का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है,
1: वाह,
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: चिपको
1: प्रथा।
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा, हाँ। तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन मिलिंद गुना जी, देन द गर्ल विनी माई डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडिंग समाजशास्त्र,
1: समाज
0: लेकिन
1: मानवी की
0: हाँ लेकिन आदिवासियों की,
1: जी।
0: शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है, और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली, तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन

0: इंडिया, वो भील या डागर या महादेव कोळी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग हैं, थोड़ी सी उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करें फिर, बहुत है। और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कॉन्ट टेक लिबर्टीज विथ एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परिकथा है बड़ों के लिए,
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, दे आर ऑल वेरी बिलीविंग एंड दे आर ऑल वेरी स्केयर्ड इनसिक्योर एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लविंग। तो ये सब जो है तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन
1: जी।
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें, फिर हमने अपनी भाषा बनाई। और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक, दोनों इतने मजे के, तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी कि ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, इसे सही भाषा थोड़ी ना
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला गलत बोला, मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन। तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
1: जी।
0: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स।
1: ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात बोले।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस।
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगे।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था, डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट आइटम का। सो देर वॉज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। सो आई सेड आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह। सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी। बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कम साल हो, मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, ही सेड आई वॉज हिज नंबर वन सपोर्टर। तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट। सो आई सेड अच्छा, तो ये है वगैरह, फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड अच्छा, तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, एंड परमिशन एवरीवेयर। ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, यू नो। सो वी शॉट ऑल ओवर, फैंटास्टिक, एंड इट वाज इट रियली वेंट अप वेरी वेल।
0: क्या बात है,
1: इट्स सैड दैट द फिल्म डिडंट, पीपल हैव नॉट सीन इट सो मच।
0: जी जी जी। अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए।
1: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
0: जी।
1: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
1: जी,
0: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
1: मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाश।

0: ने किया है, फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट। अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर
1: जी
0: सा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज
1: जी
0: नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म। हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो
1: जी
0: पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छप रही है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ। आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है। हम अपने
0: तो अपने
1: श्रोताओं से कहते हैं
0: श्रोताओं
1: कि
0: से
1: वो तय
0: पूछो
1: करेंगे
0: कि
1: कि
0: लवली
1: क्या
0: लवली,
1: नाम
0: आई
1: होगा।
0: लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड
1: जी
0: सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस,
1: जी
0: थैंक
1: सही
0: यू।
1: जी, एक बात कहना चाहता हूं।
0: जी
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था
0: हाँ।
1: और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता
0: अभी तो मैं ये
1: हूं।
0: कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है
1: जी, तो
0: सुनकर।
1: आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर
1: आगे कभी बात करेंगे।
0: तो किए ना,
1: मुझे पता नहीं
0: वादा
1: था
0: निभाया,
1: कि 20
0: निभाया
1: साल
0: ना।
1: इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की।
0: नहीं,
1: थोड़ी
0: मुझे
1: ज्यादती
0: बहुत
1: है इतने
0: अच्छा
1: सारे
0: लगा।
1: सवाल कर। बहुत बहुत
0: क्या
1: शुक्रिया।
0: क्या
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई। बातचीत का ये छठा दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन भी जारी है और 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आंदोलन के पहले ही दिन छात्रों से मिलना चाहिए था, लेकिन वह चुप रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। गुमला जिले से पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिनजमा ने बताया कि इस गिरोह के अपराधी झारखंड समेत अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज सिमरेगा, बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ समेत अन्य जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मांडर की थाप के साथ सुंदर लोक नृत्य का आनंद लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: नमस्कार। इश्क की दुनिया में मौसम कभी सिर्फ मौसम नहीं होता। कभी बारिश की सर्द उजली नन्ही सी बूंद अपने महबूब की याद बनकर पलकों पर ठहर जाती है। ऐसे में चांदनी भी शरारते कर उसके चेहरे पर नूर की रोशनी बन उसे बे इंतहा खूबसूरत बना देती है। उसकी खामोशी उसकी नजरें बयां कर देती हैं और मैं चुपचाप उसकी नजरों को पढ़ लिया करता। पहले दिल के करीब इतना कोई नहीं आया था। कहीं उससे मुझे इश्क तो नहीं हुआ है।

0: इश्क का एहसास फिजाओं में बिखरी खुशबू संग और भी जज्बाती हो गया। उनकी एक झलक से पलकों ने चपकना ही छोड़ दिया था। उसकी कजरारी नजरों का हौली से कुछ कहना और दिल का मचलना, इन मदमस्त हवाओं की शोखियों ने भी तो कानों में धीमे धीमे से कुछ ऐसा कहा कि आसमान पर बिखरे बादल किसी ख्वाब की तरह नजर आने लगे। ऐसे में दिल हसीन जज्बातों को महसूस करने लगा।
1: तुम

दिल की धड़कनों पर दस्तक देती ये नर्म फुहारों की सरगम, ये डालियों का भीग कर हवाओं का आंचल लपेट कर झूमना, ये बादलों की मखमली उड़ती चादर अपने साथ ले

थी उसकी यादों की बारात। ये चांद सा उजला मुखड़ा, वो माथे पर सजी सुर्ख बिंदिया और फैल गई चेहरे पर उसके हया की लाली। तेरे हुस्न के आगे ये फिजाएं भी फीकी लगने लगी।

उसने भी मुझे किस कदर सताया है। मेरे इशारों को समझकर भी ना समझने का ये अंदाज भी बड़ा कातिलाना है। न जाने किस नाम से तुमने मुझे पुकारा, इश्क प्यार मोहब्बत कोई जुल्म तो नहीं, ये तो मोहब्बत की बारिश की रवानगी, जानने की नजाकत और दिल की धड़कनों का मधुर संगीत है। इसे तो ख्यालों में ख्वाबों में आने का बस एक बहाना चाहिए।

हर लफ्ज इश्क का कहता है, हर धुन दिल में उतर जाती है, तलाशती है उसे जिसमें चाहत की खुशबू है, बेहिसाब रंग है, एहसास है। कभी मुस्कुराती हैं आंखें तो कभी छलकती हैं, कभी दिल झूम कर गा उठता है, बरस उठता है इन बादलों की तरह। चंचल शोख अदाओं की मस्तियां लहरों की तरह मचलने को बेताब रहती हैं, किसी के खिलने किसी के हंसने से महक उठती है सांसों की लय भी। कहीं सितार बज उठते हैं तो कहीं चांदनी सी निखर उठती है।

रिमझिम फुहारों को बनाकर साज ये दिल भी गुनगुनाने लगा है। तुम संग साथ हो तो बारिश में भी मजा आने लगा है। ये खिले गुलाबों से नर्म फूलों की तरह तुम्हारी हंसी, मुझे एहसास हो चला है कि तुम्हें तारीफ की चाहत है। तभी तो ये नजाकत भरे अंदाज, ये आंचल का लहराना, ये कदमों से लिपटी पायल के घुंघरुओं का बजाना, हर मंजर मोहब्बत का एक नया अफसाना बयां करने लगा है।

0: बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: तो अब छाए गीत के।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शेष बचे हुए मतलब शाम में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अभी से थोड़ी देर के बाद यानी 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे स्वरोजगार के अनेकों विकल्प के बारे में और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI एक कंप्यूटर तकनीक है इसके बारे में। इसी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा समाज के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी और वार्ताकार होंगी जयश्री। 6:00 प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी, जिसमें चर्चा होगी सोयाबीन की खेती में प्रबंधन के बारे में और धान फसल के कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको भेंटवार्ता सुनवाएंगे एक किसान से, और किसान भेंटवार्ताकार होंगे अर्जुन सिंह जोरकट पलामू के, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 6:30 पर जननी कार्यक्रम होगा, ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए नवीन कृषि यंत्र के बारे में और आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ के बारे में। इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको एक वार्ता सुनवाएंगे पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व, इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे प्रादेशिक समाचार होगा। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर गीत एवं गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। आज के फनकार होंगे हरिहरन। 7:45 पर आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम महुआ। आज की कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे हंस राज हंस के गाए चंद गीत। 8:45 पर हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के

अनकार। 10 बजे हमारा फिल्मी गीतों का नियमित कार्यक्रम होगा रजनीगंधा, 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। श्रोताओं नमस्ते, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन, फल फूलों की खेती, मसाला फसल, पौध नर्सरी, मशरूम उत्पादन और संरक्षित खेती जैसे विकल्पों पर काम किया जा सकता है। युवा किसान उत्पादन के साथ पैकिंग, ग्रेडिंग और स्थानीय बाजार में बिक्री पर भी ध्यान दे सकते हैं। पशुपालन और कृषि से जुड़े व्यवसाय भी हैं। डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय भी युवाओं के लिए एक विकल्प बन सकता है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले प्रशिक्षण, बाजार और चारे या कच्चे माल की उपलब्धता और पशु स्वास्थ्य की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। मशरूम उत्पादन भी एक विकल्प है। कम जगह में कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवा मशरूम उत्पादन सीख सकते हैं, लेकिन उत्पादन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है और बाजार की मांग को समझना भी जरूरी है। डिजिटल और कंप्यूटर सेवाएं भी हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान रखने वाले युवा टाइपिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग और अन्य वैध डिजिटल सेवाओं का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आज डिजिटल कौशल सीखना स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ऑनलाइन काम और डिजिटल कौशल, युवा ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट से जुड़े काम, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य कौशल सीखकर वैध ऑनलाइन काम के अवसर को तलाश सकते हैं। मरम्मत और तकनीक सेवाएं, मोबाइल, कंप्यूटर, बिजली के उपकरण, मोटर पंप और कृषि मशीनों की मरम्मत जैसे कामों के लिए प्रशिक्षित युवाओं की मांग रहती है। युवा किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से अपनी कौशल को बढ़ा सकते हैं और ये काम शुरू कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भोजन, किराना और अन्य सामान की डिलीवरी, यानी आप डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं। वाहन आधारित सेवाएं, छोटे लॉजिस्टिक कार्य भी युवा स्वरोजगार को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के रूप में भी युवा स्थानीय कृषि उत्पादों से मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करने और व्यवसाय करके शुरू कर सकते हैं, जैसे मसाले, सत्तू, अचार, पापड़, सूखे खाद्य पदार्थ या अन्य अनाज की पैकेजिंग करके। इसकी स्वच्छता, गुणवत्ता, उचित पैकेजिंग और आवश्यक खाद्य नियमों का पालन करना जरूरी है। सिलाई, प्रिंटिंग और डिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई कपड़ों की प्रिंटिंग, फ्लैक्स या डिजाइनिंग जैसी सेवाएं भी स्थानीय रूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पौधों की नर्सरी भी बना सकते हैं। सब्जियां, फूलों और फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करना भी कृषि से जुड़े स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। तो आप कुछ कुछ ऐसे काम हैं जिसे आप करके अपने स्वरोजगार को बढ़ा सकते हैं और ये बस एक कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। तो आप अपने आप को प्रशिक्षित करें, कौशल बनाएं और अपना काम शुरू करें। अब आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अब आइए आपको वार्ता सुनवाते हैं। आज का विषय है समाज के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं जयश्री।
1: किसी भी देश या समाज की उन्नति और उसका भविष्य पूरी तरह से उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। युवा समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं देश का भविष्य बदल दूंगा। युवाओं में केवल शारीरिक ऊर्जा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके भीतर सामाजिक चेतना का विकास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक चेतना का अर्थ है समाज की समस्याओं, जिम्मेदारियों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना और समाज के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देना। आज के आधुनिक और तेजी से बदलते युग में युवाओं में इस चेतना का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सामाजिक चेतना एक ऐसी मानसिक और नैतिक भावना है जो व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे समाज के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। जब एक युवा सामाजिक रूप से चेतन होता है तो वह समाज में व्याप्त गरीबी, निरक्षरता, असमानता, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव और पर्यावरण क्षरण जैसी समस्याओं को देखकर मूकदर्शक नहीं बनता। वह इन समस्याओं के कारणों को समझता है और उनके समाधान का हिस्सा बनने का प्रयास करता है। युवाओं में यह चेतना देश को रूढ़िवादिता

0: एस और सामुदायिक कार्यों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। जब युवा जमीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को देखते हैं तो उनमें सहानुभूति और चेतना का संचार होता है। परिवार और परिवेश सामाजिक चेतना के बीज सबसे पहले परिवार में बोए जाते हैं। यदि माता पिता घर में दूसरों की मदद करने, बड़ों का सम्मान करने, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देने की बात करते हैं तो बच्चे बचपन से ही सामाजिक रूप से जागरूक बनते हैं। डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया, आज का युवा डिजिटल युग में जी रहा है। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सामाजिक चेतना जगाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। युवा इसके जरिए देश विदेश के सामाजिक मुद्दों, अभियानों और मानवाधिकारों के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल सक्रियता के माध्यम से वे गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और राहत कार्यों के लिए फंड भी जुटा सकते हैं। एक सामाजिक रूप से जागरूक युवा समाज में स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। वह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना। वह मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग पूरी समझदारी से करता है, ना कि किसी के बहकावे में आकर। वह डिजिटल स्पेस में नफरत फैलाने के बजाय रचनात्मक विचारों और ज्ञान को साझा करता है। युवाओं में सामाजिक चेतना का विकास कोई विकल्प नहीं बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एक जागरूक युवा पीढ़ी ही रूढ़िवादिता, भ्रष्टाचार और नफरत की दीवारों को गिराकर एक समता तुल्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, अपने सपनों को विचारों में बदलो और विचारों को क्रियान्वयन में। देश के माता पिता, शिक्षकों, सरकार और स्वयं युवाओं को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग हो सके। जब देश का युवा सामाजिक रूप से जागृत होगा तभी भारत वैश्विक पटल पर एक सच्चे विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था समाज के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी। वार्ताकार थी जय श्री। श्रोताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से कंप्यूटर और मशीनें ऐसे काम कर सकती हैं जिसमें सामान्यतः इंसानी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जानकारी को समझना, सवालों के जवाब देना, तस्वीरों या आवाज़ों की पहचान करना, भाषा का अनुवाद करना, किसी समस्या के समाधान में सहायता करना और जानकारी के आधार पर अनुमान लगाना, लिखने, पढ़ने या विश्लेषण करने में सहायता करना। AI इंसान की तरह भावनाएं या चेतना रखने वाला व्यक्ति नहीं, यह कंप्यूटर सिस्टम और बनाए गए मॉडल के आधार पर काम करती है। तो अब आइए चलते चलते सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए आज कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व आज जलवायु संकट के समय पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष पर आज रांची के अल्बर्टिका चौक पर सीआरपीएफ के राष्ट्रभक्ति बैंड की विशेष प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देशभक्ति की धुनों से सजे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट और आम नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं कृषि संबंधित कार्यक्रम खेती बारी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। आज हम बात करेंगे खरीफ मौसम की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती के प्रबंधन के बारे में। सोयाबीन किसानों के लिए अच्छी आमदनी का साधन बन सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए केवल बीज बो देना पर्याप्त नहीं है। खेती की तैयारी से लेकर के कटाई तक हर चरण में सही प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, खेती का चुनाव करना चाहिए और उसे कैसे तैयार करना है, इसके बारे में बताती हूँ। सोयाबीन के लिए ऐसी भूमि अच्छी मानी जाती है जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहने से पौधे की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं और फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें और मिट्टी को भुरभुरी रखें। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर करें, विशेषकर जहां भारी बारिश की संभावना रहती है वहां। अच्छे बीज का चुनाव करें। अच्छी पैदावार की शुरुआत अच्छे बीज और प्रमाणित बीजों से होती है। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म का चयन करें। बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और पैकेट पर दी गई जानकारी जरूर देखें। पुराने या खराब गुणवत्ता वाले बीज से पौधों की संख्या कम हो सकती है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बीज उपचार भी होता है। बुआई से पहले बीज उपचार करना प्रबंधन फसल प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इससे बीज और शुरुआती पौधों को कई रोगों से बचाने में मदद मिलती है। बीज उपचार के लिए कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या स्थानीय कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताई गई अनुशंसित विधि और मात्रा का ही उपयोग करें। किसी भी रसायन की मात्रा अनुमान से न लें। सोयाबीन में राइजोबियम जैसे उपयोगी जैव उर्वरक का प्रयोग भी क्षेत्रीय कृषि सलाह के अनुसार ही किया जा सकता है। सही समय पर बुवाई हो। सोयाबीन की बुवाई सामान्यतः मानसून की शुरुआत और खेत में पर्याप्त नमी आने के बाद की जाती है। बहुत जल्दी या बहुत देर से बुवाई करने पर फसल की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में मानसून की स्थिति और कृषि विभाग के स्थानीय सलाह को ध्यान में रखकर बुवाई करें। उचित दूरी और बीज दर को भी देखें। पौधे के बीच उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा घनी फसल हवा और प्रकाश को संचार को कम करता है, उसे बाधित करता है, जिससे रोग और कीटों की समस्या बढ़ सकती है। बीज की मात्रा और कतार से कतार की दूरी किस्म, मिट्टी और स्थानीय कृषि अनुशंसा के अनुसार रखें। जरूरत से ज़्यादा बीज डालना हमेशा अधिक उत्पादन की गारंटी नहीं देता है। पानी का प्रबंधन। सोयाबीन को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन खेत में पानी का लंबे समय तक जमा रहना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बारिश के दौरान खेत में पानी जमा होने पर निकास की व्यवस्था करें। दूसरी ओर लंबे समय तक बारिश न होने पर मिट्टी में नमी की कमी होने से स्थानीय सलाह के अनुसार सिंचाई की व्यवस्था करें। खरपतवार को नियंत्रित रखें। सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक, प्रकाश, जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए खेत को शुरुआती अवस्था में खरपतवार से मुक्त रखना बहुत जरूरी है। निराई गुड़ाई, यांत्रिक विधि या अनुशासित खरपतवार नाशी का इस्तेमाल स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें। खरपतवार नाशी की मात्रा मनमाने ढंग से बढ़ाना फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कीट और रोग प्रबंधन। सोयाबीन में विभिन्न प्रकार के कीट और रोग दिखाई दे सकते हैं, इसलिए खेत का नियमित निरीक्षण करें। पत्तियों का असामान्य दाग, पत्तियों का मुड़ना, पौधों का मुरझाना, पत्तियों का असामान्य रूप से झड़ना या कीट दिखाई देने पर तुरंत ध्यान दें। हर कीट को देखते ही दवा का छिड़काव करना जरूरी नहीं है। पहले समस्या की पहचान करें, आर्थिक नुकसान की सीमा तथा स्थानीय कृषि सलाह के आधार पर ही उपचार करें। जहां संभव हो एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM अपनाएं। खेत की निगरानी,
स्वस्थ बीज, खरपतवार नियंत्रण, जैव उपाय और जरूरत पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशी, इन सभी को मिलाकर प्रबंधन करना ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। पोषक तत्वों का प्रबंधन। सोयाबीन की अच्छी वृद्धि के लिए संतुलित पोषण जरूरी है। खेत में खाद और उर्वरक की मात्रा मिट्टी की जांच और स्थानीय अनुशंसा के आधार पर तय करना सबसे अच्छा रहता है। बुआई के समय जरूरत के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराने और पौधों की शुरुआती वृद्धि अच्छी हो सकती है। याद रखें, अधिक उर्वरक डालना

उत्पादन की गारंटी नहीं देता है। संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देना ही बेहतर प्रबंधन है। बारिश और तेज हवा से भी बचाव की जरूरत है। मानसून के दौरान तेज बारिश और हवा से खेत में जल भराव, मिट्टी का कटाव, पौधों के गिरने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए खेत में उचित जल के निकास जरूर रखें। खेत की मेड़ और नालियों को समय समय पर आप चेक करते रहें। खेत की नियमित निगरानी करें। किसान भाई, अच्छी फसल के लिए खेत को केवल बुआई और कटाई के समय देखने के बजाय पूरे मौसम में नियमित रूप से देखना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार खेत का निरीक्षण करें। पौधे की बढ़ोतर, पत्तियों का रंग, खरपतवार, कीट और रोग की स्थिति पर ध्यान दें। समस्या जितनी जल्दी पहचान आएगी, उसका प्रबंधन भी उतना ही आसान होगा। कटाई का सही समय, सोयाबीन कटाई तब करें जब फसल पकने के उचित लक्षण दिखाई देने लगे, फलियां सूखने लगे। बहुत जल्दी काटने से दाने पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं और बहुत देर से काटने से झड़ झड़ फलियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, जिससे नुकसान भी होता है। कटाई के बाद दोनों को अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित रखें और सूखे स्थान पर इसका भंडारण करें। भंडारण से पहले सोयाबीन के दानों को अच्छी तरह सुखाने की जरूरत होती है। नमी अधिक रहने पर फफूंद और भंडारण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो कुछ बातों का ध्यान रख के अगर आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख के और उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब आइए आपको एक सफल किसान से भेंट सुनवाते हैं और वो है अर्जुन सिंह जोरकट पलामू से। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

0: भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, आज हम बातें करेंगे रेशम कीट पालन की। हमारे पलामू प्रमंडल में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रेशम कीट पालन बहुतायत मात्रा में की जाती है और रेशम कीट पालन उनके आजीविका का एक मुख्य साधन बनता है। आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के पोस्ट सुवा जोरकट गांव के एक सफल किसान अर्जुन सिंह। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इसकी खेती कब से शुरू की जाती है?
1: ये जुलाई के तृतीय सप्ताह से शुरू हो जाती है। अभी रेशम के क्षेत्र में अभी अड्डा का चुनाव किया जाता है, जो इसको निसंक्रमण करके आदमी अड्डा को रखता है जहाँ फसल पालन करना है। अभी पौधा का निसंक्रमण करना है।
0: अच्छा, इसके शुरू करने की विधियाँ क्या क्या हैं अर्जुन सिंह, आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: इसमें खास करके निसंक्रमण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती है। हमेशा जंगल में होने वाला आसन और कहुआ के पौधा पर यह पालन किया जाता है। यह एक छोटा छोटा कीड़ा के रूप में होता है और वो कीड़ा जो है अपनी अवस्था के अनुसार बढ़ते जाता है, वही कोकून तैयार करता है, जिस कोकून से रेशम का धागा निकलता है। तो उसके लिए बारीकी से देखना पड़ता है कि हमको किस समय क्या करना है। पहले सबसे पहले अड्डा का चुनाव करना होता है, अड्डा की साफ़ सफाई करना होता है, पौधा पर कीड़ा मकोड़ा होते हैं उसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है ताकि हमारे कीड़ों को नुकसान नहीं करें। यह दो फसल होता है, एक आषाढ़ी फसल कहते हैं और एक कत की फसल कहते हैं। आषाढ़ी फसल कॉमर्शियल होता है, जिसको हम धागा के रूप में निकालते हैं, और कत की फसल हम बीहन के लिए भी रखते हैं, यानी सीड के लिए भी रखते हैं, जो 6 महीना तक रखते हैं। तो यही कार्यक्रम है। जो
0: आषाढ़ी फसल की बात हम चुकी पहले कर लें, आषाढ़ी फसल के लिए कैसे तैयारी करते हैं खेत की, कैसे किस किस पेड़ पे लगाया जाता है, कैसे किया जाता है?
1: यह आसन का पौधा होता है, कहुआ जिसको अर्जुन का पौधा बोलते हैं। यह पहले छोटे छोटे पौधा में शुरुआत किया जाता है, जिसको कि हम बहुत अच्छे तरह से संरक्षण कर सकें, कीड़े मकोड़े से बचा पाएँ, पक्षी से बचाएँ। तो इसके लिए निसंक्रमण करके नीचे चूना ब्लीचिंग साफ सफाई करके।
0: निसंक्रमण कैसे करते हैं?
1: चूना से, ब्लीचिंग से,

0: फॉर्मलिन से हम इसको चढ़ाने के पहले जो है से 15 दिन पहले हम ये सब क्रिया कर लेते हैं।
1: मतलब किसे पेड़ को साफ सुथरा करते हैं?
0: हाँ, पेड़ से, पेड़ के जड़ तर, ताकि कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं कर पाए। इसके लिए बारीकी से ध्यान देना पड़ता है।
1: और किन किन मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है?
0: मुख्य बात है कि अभी बरसात के सीजन में बहुत कीटनाशक जंतु भी होते हैं, जिससे बचाने की ज़रूरत होता है, और सिर्फ संरक्षण इसके लिए महत्वपूर्ण है।
1: जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे किसान भाई जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर तो वृक्ष पे जो रेशम कीट पालने की, तो वो रेशम कीट कहाँ से प्राप्त करेंगे?
0: वह सेंटर से प्राप्त होता है।
1: जहाँ कहाँ पर सेंटर?
0: सेंटर है अग्र परियोजना केंद्र चिया की, वहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और कभी कभी नहीं रहता है तो झारखंड में अन्य जगह भी हैं, जैसे बेंगाबाद हो गया, मधुपुर हो गया, सरायकेला हो गया, खरसावा हो गया, फिर हाटगमरिया हो गया, दूधी हो गया, ये सारे जगह पर सेंटर हैं जहाँ से हम लोग सीड प्राप्त कर लेते हैं।
1: अच्छा, बीज जो आप प्राप्त करते हैं, सीड जो प्राप्त करते हैं, तो उसको कैसे उपचारित करते हैं? उपचार करके लगाने की आवश्यकता होती है कि कैसे कैसे उसको पेड़ों पर चढ़ाते हैं?
0: वो प्राकृतिक चीज़ है, चूँकि तितली से अंडा मिलता है, और वह अंडा जिस दिन तितली देती है, जिसको हम शलभ बोलते हैं, उस शलभ से जिस दिन अंडा अगर मिल जाता है तो उसके 9वां दिन वो हैच कर जाता है। 8 या 9 दिन में वो हैच कर जाता है, और उसको हम छोटा छोटा पत्ती दे करके उस पत्ती पर कीड़ा चढ़ा करके पौधा पर हम चढ़ाते हैं, और वैसे समय में चढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा वर्षा नहीं हो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो, हवा आंधी तूफान ना चले, ये सब ध्यान देना पड़ता है। और इसका चूँकि 4 अवस्था है, अवस्था 5 है, लेकिन 4 मरतबे ये अपना शारीरिक परिवर्तन करता है, जिसको केंचुल छोड़ने की प्रक्रिया बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये अपने जीवन काल में कीड़ा के समय में 4 मरतबे केंचुल छोड़ता है।
1: अच्छा,
0: और अब उसका इसी में शारीरिक विकास होता है।
1: इसका पूरा जीवन क्रिया कितना होता है, जैसे कितने दिनों में फिर परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है?
0: इसका प्रथम फसल में तो आपको 29 से 35 दिन के अंदर जो है यह तैयार हो जाता है।
1: मतलब 29-35 दिन में आप जो चढ़ा दिए पेड़ पर,
0: हाँ,
1: तो 29-35 दिन में फिर तैयार हो गया।
0: हाँ,
1: तो इसको उतारने की फिर प्रक्रिया करते हैं?
0: हाँ, 7 दिन के बाद हम उतार लेते हैं उसको।
1: तो तैयार हो गया?
0: वो तैयार हो गया।
1: तो फिर इसको बिक्री कहाँ करते हैं आप?
0: बिक्री स्वयं जो है से विभाग में चला जाता है, और नहीं तो व्यापारी लोग भी जो होते हैं वे भी ले जाते हैं दाखकरण के लिए, खुद व्यापारी आ जाते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है कि जैसे मान लिया हम रेशम कीट पालन कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें कभी आपदा विपदा किस तरह से सुरक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है कीड़ों को?
0: यह आपदा विपदा में जो है हम नेट लगा करके इसकी सुरक्षा भी करते हैं। नेट होता है जो 40x10 का नेट होता है, जिसको छोटे छोटे 2-3-4 पौधा को हम ढक करके इससे सुरक्षित कर लेते हैं। और चिड़िया हो गया, गिरगिट हो गया, गिलहरी हो गया, ये सारा चीज़ जो है से इसके नुकसान के लिए ही रहते हैं, तत्पर रहते हैं, जिससे कि सुरक्षा ज़रूरी है, तो ये सब पर भी ध्यान देना पड़ता है। हम लोग गुलेल वगैरह का उपयोग करते हैं इससे संरक्षण के लिए। आपको गावा वगैरह से भी बहुत, जैसे हाड़ा हो गया, बिरनी हो गया, पचोइया हो गया, तो ये सब भी नुकसान करते हैं,
1: नुकसान पहुँचाता है ये सब,
0: तो इससे भी बचाने की ज़रूरत होती है।
1: और यहाँ जैसे हमारे किसान भाई लोग जैसे रेशम कीट पालन आप करते हैं, तो इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी होती है?
0: हाँ हाँ, खेती बाड़ी
1: क्या क्या लगाए हैं अभी खेतों में खरीफ के लिए?
0: मकई हो गया, बादाम हो गया, अरहर हो गया, तिल हो गया, धान हो गया, उड़द हो गया, फिर बराई हो गया, बोदी हो गया, खीरा, ये सारा चीज़ साथ साथ में हम लोग कर लेते हैं।
1: अच्छा, तो यहाँ के मुख्य फसल मतलब मक्का, धान,
0: हाँ
1: यही सब है ना? अरहर?
0: हाँ है, अरहर भी है, अरहर है, बराई है, उड़द है।
1: और इसकी प्रशिक्षण आपने कहाँ से ली थी रेशम कीट पालन की?
0: रेशम कीट पालन की हम अग्र परियोजना केंद्र चिया की से लिया था, जो कि आवासीय प्रशिक्षण होता था पूर्व में, जो 5 दिनों का होता था। फिर हम लोग स्टेट में भी जा करके किए, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके, तब हम लोग को समझ में आया कि यह बहुत अच्छा चीज़ है, तो हम लोग को आर्थिक सहयोग मिलेगा इस

0: अभी अगर हम गांवों का जिक्र करें तभी किस किस गांव में रेशम कीट पालन होता है बहुत बृहद पैमाने पर?
1: बृहद पैमाने पर सबसे पहले तो गुड़िया दामर हो गया, कुंडेलवा हो गया, पीढ़िया हो गया और केवटवार हो गया, फिर हमारा जोरकट हो गया, गनके हो गया।
0: अच्छा,
1: ये सब गांव में अभी हम लोग के प्रखंड में अधिक उपज
0: मात्रा में
1: होता
0: है। अभी आप रेशम कीट पालन करते हैं, रेशम कीट पालन व्यवसाय से जुड़कर कैसा अनुभव करते हैं आप?
1: बहुत अच्छा।
0: अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
1: 5 सदस्य हैं।
0: अच्छा, तो सब लोग रेशम कीट पालन में सहायता करते हैं, बाल बच्चे भी होंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बच्चे क्या करते हैं?
1: बच्चे साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं, कीड़ा इधर उधर अगर भटकने लगा तो एक बच्चा भी 10 गो कीड़ा को।
0: कितने वृक्षों पर पालते हैं आप?
1: इसके लिए एक किसान को कम से कम चाहिए कि 300 पौधा
0: वृक्ष होना चाहिए, है ना?
1: होना चाहिए,
0: तब बेहतर लाभ होता है।
1: बेहतर
0: लगभग कितना क्विंटल पैदा कर लेते हैं आप, कितना मतलब पैदा कर लेते हैं?
1: देखिए क्विंटल के हिसाब से तो वो नहीं चलता है, गिनती के हिसाब से
0: मतलब
1: चलता
0: कितना
1: है।
0: हो जाता होगा
1: तब वो माने एक पॉकेट अंडा अगर है जिसमें कि 100 DFL होते हैं, 100 DFL का मतलब 20,000 अंडा होगा। 20,000 अंडा में अगर इसको 5 गुना से भी अगर भाग दीजिएगा तो 4×5=20, यानी 4,000 कोकून आप आसानी से तैयार कर सकते। और उसको कीमत के हिसाब से अगर कहा जाए तो एक का रेट 3 या 4 रुपया होता है, अब 4×3=12,000।
0: इसकी बिक्री फिर वहाँ कर देते हैं आप, अगर परियोजना केंद्र चियांकी
1: में।
0: तो बिक्री व्यवस्था के लिए तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं?
1: कोई परेशानी नहीं है इसका, मार्केटिंग के लिए कोई सोचना ही नहीं है।
0: आप थे पलामू जिला के जोरकट गांव पोस्ट सुवा के एक सफल किसान, रेशम कीट पालक अर्जुन सिंह। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और रेशम कीट पालन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता एक सफल किसान से, अर्जुन सिंह जोरकट पलामू के, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। श्रोताओं, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी, सही किस्म, उचित खाद पानी के साथ साथ कीट और रोगों का समय पर प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। कई बार किसान खेत की कीट या रोग दिखाई देने के बाद तुरंत दवा का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन हर कीट के लिए तुरंत रासायनिक दवा का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता है। सबसे पहले समस्या का सही पहचान करना, फिर उचित उपाय अपनाना जरूरी है। तो धान में कुछ कीट प्रमुखता से पनपते हैं, उनमें से है एक तना छेदक कीट। धान में तना छेदक एक महत्वपूर्ण कीट है। इसकी सुंडी पौधे के तने के अंदर जाकर नुकसान करती है। शुरुआती अवस्था में प्रभावित पौधे के बीच की पत्ती सूख सकती है। इसे अक्सर डेड हार्ट कहा जाता है। बाद की अवस्था में बलियां निकलने के बाद यानी तना प्रभावित हो जाए तो बलियां सफ़ेद दिखाई दे सकती हैं, उनमें दाने नहीं बनते हैं। इसे वाइट ईयर कहा जाता है। इसका प्रबंधन कैसे करें? खेत का नियमित निरीक्षण करें, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, जरूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देने से बचें, जहाँ संभव हो खेत में कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप जैसी विधियों का उपयोग स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार किया जा सकता है। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंचता है तभी कृषि विभाग के द्वारा अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं। पत्ती लेप्टक कीट, इस कीट की सुंडी धान की पत्तियों को लपेट कर अंदर से हरे भाग को खाती है। प्रभावित पत्तियां सफ़ेद या पारदर्शी जैसी दिखाई दे सकती हैं। बचाव के लिए खेत का नियमित निरीक्षण करें, अनावश्यक रूप से ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग ना करें। खेत में मित्र कीटों और प्राकृतिक शत्रुओं को बचाना भी जरूरी है। कीटनाशी का प्रयोग तभी करें जब प्रकोप अधिक हो और स्थानीय अनुशंसा हो। भूरा फुंदका धान का महत्वपूर्ण रस चूसने वाला कीट है। यह पौधों के तने के निचले हिस्से से रस चूसता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और खेत में गोल गोल या अलग अलग हिस्सों में पौधों के सूखने की स्थिति दिखाई दे सकती है। इसे आम तौर पर हॉपर बर्न कहा जाता है। इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप खेत में जाकर

कर नियमित निगरानी करें। अत्यधिक नाइट्रोजन खाद से बचें। खेत की अनावश्यक रूप से बार बार कीटनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि इससे कई बार प्राकृतिक शत्रु कम हो जाते हैं और फुंदकी की समस्या बढ़ सकती है। पौधे के बीच उचित दूरी और खेत में संतुलित प्रबंधन रखें। यदि प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंचता है तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ और अनुशंसित दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। गधी बग, यह धान की बलियों से निकलने वाले और दाने बनने की अवस्था में गंधी बग नुकसान कर सकता है। यह विकसित हो रहे दानों का रस चूसता है। इसमें दानों की गुणवत्ता और भराव प्रभावित होते हैं, इसलिए बलियों से निकलने समय यह नियमित रूप से निगरानी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे कि झुलसा रोग या ब्लास्ट। धान में ब्लास्ट एक महत्वपूर्ण रोग है। पत्तियों पर नाव के आकार के भूरे या धूसर धब्बे दिखाई दे सकते हैं। यदि रोग गर्दन वाले हिस्से को प्रभावित करता है तो बलियों के बनने और दाने भरने में असर पड़ सकता है। स्वस्थ और अनुशंसित किस्म का चयन करें। खेत में संतुलित पोषण रखें। नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा से बचें। खेत में रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पहचान कर स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और अनुशंसित फफूंदनाशी का प्रयोग करें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इस रोग में पत्तियों के किनारों या सिरे से पानी जैसे दिखाई देने वाले धब्बे शुरू होने लगते हैं और धीरे धीरे फैल सकते हैं। पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। बारिश, तेज हवा और खेत में अधिक नमी की स्थिति में इसका प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए खेत में संतुलित पोषण रखें। अत्यधिक नाइट्रोजन से बचें। खेत में पानी का उचित प्रबंधन रखें। रोग दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ से सही पहचान और उपचार की सलाह लें। बैक्टीरियल रोगों में बिना सलाह के फफूंदनाशी डालना हमेशा ही समाधान नहीं होता है। सीथ ब्लाइट, यह रोग धान की पत्तियों के नीचे वाले हिस्से में यानी पत्ती के आवरण पर दिखाई देता है। शुरुआत में पानी जैसे या हरे भूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं, बाद में बड़े होकर पौधे की ऊपरी हिस्सों तक फैल सकते हैं। बहुत घनी फसल और अधिक नमी की स्थिति में ये रोग पनपते हैं। उचित पौधे की इसका प्रबंधन करना है तो उचित पौधे की दूरी रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन से बचें। खेत में नियमित निगरानी करें। रोग की पुष्टि होने पर स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुशंसित फफूंदनाशी का प्रयोग करें। एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन यानी कि IPM। किसान भाइयों, कीट और रोग प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका केवल रासायनिक दवाओं पर निर्भर रहना नहीं है। इसे कहते हैं एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन। इसमें कई उपायों को मिलाकर अपनाया जाता है। पहला है स्वस्थ बीज और उपयुक्त किस्म का चयन करना। दूसरा है समय पर बुआई और रोपाई करना। तीसरा है उचित पौधों की दूरी रखना। चौथा है संतुलित खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल करना। पांचवा है खेती की नियमित निगरानी करना। छठा है खरपतवार पर नियंत्रण रखना। सातवां है प्राकृतिक शत्रु और मित्र कीटों की रक्षा करना। आठवां है जरूरत पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशक या फफूंद नाशी का प्रयोग करना। सिर्फ खेत के किनारे से देखकर वापस ना आए किसान भाइयों। खेत के अलग अलग हिस्सों में जाकर पौधों की पत्तियां, तना और बलियों को देखें। ध्यान दें कि पत्तियों पर धब्बे तो नहीं है, पत्तियां मुड़कर सूख तो नहीं रही हैं, तने के अंदर के कीट के नुकसान के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पौधे असामान्य रूप से पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, बलियां सफ़ेद तो नहीं पड़ रही हैं, दानों में असामान्य नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो समस्या को अगर शुरुआती चरण में ही पहचान लिया जाए तो उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है।
किसान भाइयों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कीट दिखाई देते ही तुरंत दवा का छिड़काव ना करें, पहले कीट की पहचान करें।

और देखी कि इसका प्रकोप वास्तव में आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। दवा का चयन और मात्रा स्थानीय कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ की अनुशंसा के अनुसार करें। दवा के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पर ध्यान दें। निर्धारित मात्रा में ज़्यादा दवा डालना फसल, मिट्टी, पर्यावरण और किसान के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो श्रोताओं, कुछ बातों का ख्याल रख के आप अपने धान की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। आज कार्यक्रम खेती बारी में आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण और कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी।

कार्यक्रम जननी सुनने वाले सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से जुड़े बहुत से काम महिलाएं करती हैं, जैसे बीज की सफाई करना, रोपाई करना, निराई गुड़ाई कटाई, फसल की सफाई, पशुओं के लिए चारा काटना, सब्जियों की खेती करना, जैसे कामों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इन कामों में शारीरिक मेहनत और समय दोनों अधिक लगते हैं। आधुनिक कृषि यंत्र इन कामों को आसान और तेजी से कम श्रम वाला बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए नवीन कृषि यंत्र कौन कौन से हैं। इसमें पहला है बैटरी से चलने वाला स्फेयर। आजकल बैटरी चलित स्फेयर काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इसमें कंधे पर लेकर या दूसरे हल्के मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग खेत में कीटनाशक, फफूंदी या कृषि विभाग के द्वारा अनुशंसित अन्य घोल के छिड़काव में किया जाता है। इसमें हाथ से लगातार पंच चलाने की मेहनत कम हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी कृषि रसायन का इस्तेमाल केवल अनुशंसित मात्रा और सुरक्षित निर्देशों के अनुसार ही करें। पावर वीडर, खरपतवार निकालना खेती के सबसे मेहनत वाले कामों में से एक है। पावर वीडर छोटे और मध्यम खेतों के निराई गुड़ाई के काम को आसान बनाने में मदद कर सकता है। इसमें हाथ से घंटों झुककर निराई करने की जरूरत कम हो सकती है और समय की भी बचत होती है। सब्जियों तथा कतार वाली फसलों के उपयुक्त मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोनोवीडर, धान की रोपाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए कोनोवीडर उपयोगी उपकरण है। इसे खेत में कतारों के बीच चलाया जाता है और खरपतवार को उखाड़ने, मिट्टी को हल्का ढीला और ढीला करने में मदद करता है। धान की खेती करने वाली महिलाओं के लिए यह उपकरण विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हाथ से निराई करने में मेहनत जो उसमें मेहनत लगती है वो थोड़ी कम हो जाती है। धान की रोपाई की मशीन भी है। धान की रोपाई में काफ़ी समय और श्रम लगता है। पैडी ट्रांसप्लांटर या धान रोपाई मशीन से रोपाई का काम तेजी से किया जा सकता है। छोटे किसानों के लिए मशीन का चयन खेत के आकार, रोपाई की पद्धति और उपलब्ध बजट के अनुसार करना चाहिए। जहां व्यक्तिगत रूप से मशीन खरीदना महंगा हो, वहां किसान समूह या महिला स्वयं सहायता समूह मिलकर मशीन किराए पर लेने या सामूहिक रूप से उपयोग करने का विकल्प देख सकते हैं। मिनी पावर टीलर, छोटे खेतों के लिए मिनी पावर टीलर भी उपयोगी हो सकता है। इसका इस्तेमाल खेत की जुताई, मिट्टी तैयार करने और कुछ मॉडलों के अन्य कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। महिला किसान मशीन खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि इनका वजन, संचालन और रखरखाव के लिए व्यवहारिक है या नहीं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर, कटाई के बाद फसल से दाना अलग करने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त मॉडल के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। इसमें हाथ से दाना अलग करने की मेहनत समय कम हो सकता है, लेकिन मशीन चलाते समय सुरक्षा गार्ड, उचित कपड़े और निर्माता के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। फसल काटने वाली छोटी मशीन, छोटे खेतों में विशेष परिस्थितियों में मिनी रिपर या रिपर बाइडर जैसी मशीनें फसल कटाई में मदद कर सकती हैं। इनका उपयोग करने से कटाई में लगने वाला समय और शारीरिक श्रम कम किया जा सकता है। मशीन का चयन फसल, खेत की स्थिति और क्षेत्र में उपलब्ध सेवा के आधार पर कर सकते हैं। चारा काटने की मशीन, पशुपालन करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए चाप कटर या चारा काटने की मशीन बहुत उपयोगी हो सकती है।
इससे पशुओं के लिए चारा काटने के समय और मेहनत कम हो सकती है। मशीन का इस्तेमाल करते समय हाथों को काटने वाले हिस्से से दूर रखना, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। सब्जी और बागवानी के लिए छोटे उपकरण। महिलाएं घर के आसपास छोटे खेत में सब्जियों की खेती करती हैं। ऐसे में छोटे हाथ से चलने वाले उपकरण, सीडर, वीडर, प्लांटर और हल्के कृषि उपकरण उपयोगी हो सकते हैं। इससे बीज लगाने, मिट्टी ढीली करने, निराई जैसे कामों में जो मेहनत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। महिलाओं के लिए कृषि यंत्र बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृषि यंत्र सबसे बड़ा लाभ है श्रम और समय की बचत करना। अगर किसी काम से पहले कई घंटे लगते हैं और मशीन की मदद से वह काम कम समय में हो सकता है, तो महिलाएं किसान उस समय को दूसरी कृषि कार्य, पशुपालन, परिवार या छोटे व्यवसाय में लगा सकती हैं। इसके अलावा आधुनिक यंत्र महिलाओं को खेती से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर सकता है। मशीन खरीदना जरूरी नहीं है। किसान बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हर मशीन को व्यक्तिगत रूप से खरीदना जरूरी नहीं है। महिला स्वयं सहायता समूह, किसान समूह या किसान उत्पादक संगठन मिलकर कृषि मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। कई जगह कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने वाली कस्टम हायरिंग सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। इसमें मशीन महंगी जो मशीन होती है उसे खरीदने का बोझ कम हो जाता है। अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मशीन खरीदने से पहले इन बातों पर विचार करें, मशीन आपके हाथ और फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं। मशीन

का वजन संचालन आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं, मशीन की कीमत के साथ उसका रख रखाव खर्च कितना है, मशीन की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स आपके क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं, मशीन चलाने की ट्रेनिंग उपलब्ध है या नहीं, मशीन खरीदने की उपलब्धता, सरकारी सहायता या सब्सिडी की जानकारी कृषि विभाग से जरूर ले लें। मशीन चलाने से पहले इसके निर्देशों को समझें। ढीले कपड़े, सूखे बाल मशीन के घूमने वाले हिस्सों से दूर रखें। चलती मशीन में हाथ डालकर सफाई या मरम्मत ना करें। बच्चों को मशीन से दूर रखें। मरम्मत या सफाई से पहले मशीन को बंद करके सुरक्षित स्थिति में इसे रखें। जो भी किसान बहनें, आधुनिक कृषि यंत्र केवल खेती को आसान बनाने वाले उपकरण नहीं है, बल्कि ये समय, श्रम, ऊर्जा और की बचत करके महिलाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। तो ये आपको मैं जानकारी दे रही थी कि कुछ कृषि यंत्र आए हैं जिसे आप ले करके अपनी जो कृषि कार्य आप करती हैं उसमें अपना समय बचा सकती है और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य कार्य में भी कर सकते हैं। अब आइए आपको एक वार्ता सुनवाते हैं, पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

0: प्रथम हम बातें करेंगे आपसे हरे चारे की, और हरे चारे हम किस प्रकार उगाएं, कौन कौन से हरे चारे हमारे पशुओं के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं और उससे क्या लाभ है, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, प्रथम तो सर ये बताया जाए कि पशुओं के लिए हरा चारा का क्या महत्व है।
1: मैं पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हरा चारा जो है वो प्राकृतिक चारा है। हमारे पशुओं को जो पेट है, जो जुगाली करते हैं, उनका इसी के लिए बना हुआ है। हम अपने फायदे के दृष्टिकोण से जरूर उनको अनाज खिलाते हैं, लेकिन मैं पशुपालकों को ये कहूँगा कि हरा चारा उससे काफ़ी सस्ता होता है, उससे मुनाफा बढ़ता है। दूसरा ये फ़ायदा है कि हरे चारे में जो हरा रंग होता है वही विटामिन ए का पैदा करती है गाय खुद से, और उससे अपने बछड़े को विटामिन ए सप्लाई करती है, तो बछड़ा जो है उसका अंधा नहीं होता है। अगर हरा चारा शहर में नहीं देने पर पशुओं को देखा गया है कि जो गायें जन्म देती हैं अपने बछड़े को, उनके बछड़े अंधे होते हैं और वो आधे बछड़े 10 दिनों के अंदर मर जाते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि शहर में जो गायें रहती हैं वो 6 बार 7 बार पाल दिलाने पर भी नहीं गर्भवती होती है, उन्हें गाँवों पर भेजने पर देखा गया है कि वो वहाँ पर गर्भवती हो जाती हैं। तो दूसरे फायदे ये हैं। तीसरा ये कि आप हरा चारा देते हैं तो आपका आपकी गाय जो है वो 90 दिन के अंदर गर्म हो जाती है तो सालों साल बच्चा देती है, तो आपकी गाय बहुत कम बिस्की रहती है और आपको ज़्यादा दूध उत्पादन होता है और ज़्यादा फायदा होता है। तीन सभी दृष्टिकोण से देखें तो हमको पशुओं के लिए कम से कम जितना भी उसकी आवश्यकता है उसका 40% या 35 से 40 किलो ग्रास अगर हम किसी तरह से भी उसको उपलब्ध कराते हैं तो हमारी गाय स्वस्थ रहेगी और अधिक दूध देगी, हमको अधिक मुनाफा होगा। तो अब आते हैं हम लोग कि कौन सा हरा चारा हम लगाएं। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हरा चारा जो है हमारे पास झारखंड में पलामू ज़िले में 3 ऋतुएं होती हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। तो हमारे यहाँ रबी है, भदई है और गर्मा है। तो आप अभी हमारा रबी का सीज़न शुरू हो रहा है, इसमें आप जो हरे चारे का राजा कहा जाता है बरसीम घास को, तो आप उसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। और अगर लेट होता है धान के काटने में, खेत खाली होने में, तो आप लूसर्न का इस्तेमाल नवंबर में
0: अच्छा
1: कर सकते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात कि जब आप हरे चारे लगाते हैं तो आप सभी को जानकारी पशुपालक भाइयों को कि झारखंड की भूमि में फॉस्फोरस की कमी है, तो आप लगाने के पहले निश्चित रूप से अपने खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डायमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। दूसरा कि यहाँ पर कार्बनिक रसायन की कमी है, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों के पास खुद की गाय है तो वो कंपोस्ट या गोबर गैस प्लांट से जो निकलता है सलरी हम लोग बोलते हैं उसे, या केचुआ खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ की झारखंड की ज़मीन में ये आम्लीय होती है, इनका पीएच जो है वो 7 से नीचे है, तो उस आम्लीय पीएच को सही करने के लिए और पोटास की कमी को दूर करने के लिए आप पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए पोटास जरूर डालें। इन तीनों चीज़ को

0: दाल को खेत को तैयार करने के बाद अगर लूसन और बरसीम लगाते हैं तो ये आपको 50 से 55 दिन के बाद ये तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर पौधे जो है फूल देने लगते हैं तो आप उनको 50 से 55 दिन के बाद काट करके अपने पशुओं को खिलाएं। पशुओं खिलाने में एक सावधानी जरूर किसान भाइयों को बरतनी चाहिए कि ये जो बरसीम या लूसन घास है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और आप इसकी कटिंग करने जा रहे हैं दिसंबर जनवरी माह में, तो उस समय आप एक दिन अगर उसको खेत में काट के छोड़ देते हैं तो धूप में रह करके इसका 10 से 15% तक इसका वजन घट जाएगा, मतलब पानी सूख जाएगा। पानी सूख जाने के बाद अगर पशुओं को आप देते हैं तो उन्हें पतला दस्त नहीं होगा। दूसरी बात कि कभी भी पशु को एक दिन में आप 50 किलो 60 किलो बरसीम नहीं दें, धीरे धीरे पहले 5 किलो, दूसरे दिन 7 किलो, फिर 10 किलो, इस तरह से 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उन्हें पूरा का पूरा दे सकते हैं। बरसीम एक ऐसा हरा चारा है कि आप अगर 70-80 किलो बरसीम काट कर करके और एक दिन खेत में छोड़ देते हैं और दूसरे दिन अपने पशुओं को खिलाते हैं, मात्र 1 किलो खल्ली अगर खिलाएंगे सरसों की खल्ली तो आपको गाय 10 किलो दूध देगी। तो आप जोड़ के देखिए कहाँ 6 किलो अनाज और कहाँ 1 किलो अनाज, तो आप 5 किलो अनाज का जो पैसा है आप देखेंगे तो जितना लगता है उसका 20% भी हमको हरा चारा उगाने में नहीं लगता है। लेकिन हमारी एक धारणा बन गई है कि सभी लोग गाय को मकई गेहूँ बादाम की खल्ली सरसों की खल्ली खिलाते हैं, उससे मेरा कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से खिलाएं तो उनको अच्छा होगा। दूसरा, जब आप बरसीम का बीज खरीदने जा रहे हैं बाजार में तो कभी भी सस्ता बीज ना खरीदें या किसी किसान से उधार बीज ना लें।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो हाइब्रिड बीज जब आप थोड़ा महंगा होता है लेकिन आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। आपने खुद और चीज़ों में भी देखा होगा कि धान वगैरह में कि हाइब्रिड धान लगाइएगा तो दूसरे साल अगर उस हाइब्रिड धान को घर का बीज लगाइएगा तो आपको वो उत्पादन नहीं होता है। तो ये बरसी में भी देखा गया है। तो ये में सबसे बढ़िया है कि आप बरदान नाम का एक वेराइटीज है उसे आप खरीद सकते हैं। बुंदेल बरसीम 3 भी है, JHB 17-1 भी है, JHB 17-2 है। अगर इन वेराइटीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। साथ में पशुपालक इसके बाद रबी के बाद जो है हमारा गर्मा शुरू होगा तो गर्मा में आप सुडान ग्रास MP चेरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हम किसान भाइयों को देख रहे हैं पाटन इलाके में कि वो MP चेरी और सुडान ग्रास को लगा रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको सावधानी ये बरतना चाहिए कि 50 से 55 दिन के पहले सुडान MP चेरी को न खिलाएं और 50 से 55 दिन के बाद ही तब खिलाने लगे तो एक बार जरूर खेत में जाएं और देख लें कि आपका जो पैर है अगर उसे ज़मीन में धस रहा है तो यानी कि पानी की मात्रा सही है तो आप उसको काट खिलाएं। अगर ज़मीन पूरा सूख गया है या किसी कारण पानी की कमी हो रही है तो पशुओं को वो चारे न खिलाएं क्योंकि उनके ऊपर हाइड्रोसाइनिक एसिड पौधे के ऊपर टॉप्स में आ जाते हैं जो आपको खिलाने पर पशुओं के लिए ये जहर का काम करता है और पशुओं की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर MP चेरी और सुडान ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को सही बनाए रखें। इसके बाद आपका भदई आता है तो वही जो गर्मा में MP चेरी और सुडान है उसको लगाने का तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में सभी किसान भाई जो हैं अपने घर खेतों में जो लगाए हुए हैं MP चेरी उससे खिला रहे हैं पशुपालकों को और दूध ले रहे हैं। इसके बाद एक तीसरा चारा भी है जिसको सालों साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चारे में सबसे आसान आपके लिए है मूंगा का पौधा, आप लोगों ने देखा होगा या सहजन भी उसको कहते हैं, तो उसकी पत्तियों को भी पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन ये जब आप 50-100 की संख्या में पौधे लगाएंगे तभी आपको फायदा होगा। दूसरा सुबबुल भी है किसान भाइयों के पास, उसे लगाएं और उसे खिलाएं। तीसरा एक अभी जो है कैक्टस जो कांटा होता है जो आपने देखा होगा मोटा मोटा पत्ती उसकी, तो अभी एक ऐसे कैक्टस प्लांट का वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया जिसमें कांटे नहीं है। आप लाल मिट्टी में जहाँ आपका खेत खाली है वहाँ उस पौधे को लगाइएगा तो उस कैक्टस को भी आप चारा मशीन में काट करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद एक और है एजोला घास। शहर में जिनके पास जमीन नहीं है अगर वो चाहते हैं कि हम अपने पशुओं को खिलाएं तो एजोला घास एक काई है जो कि आप तालाब में देखते हैं जमा हुआ रहता है
1: जी।
0: उसी टाइप से एक एजोला होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जमीन में गोबर का घोल बना दिया, उसमें DAP डाल दिया, पोटाश डाल दिया, यूरिया डाल दिया और उस घोल में उस घास को डाल देते हैं। वो पानी पर छलते रहता है और वो 3 दिन में दुगना हो जाता है।

0: तो आप जितना एरिया में चाहें तो एजोला घास डाल्टनगंज शहर में, गढ़वा में भी, लातेहार में भी, और गव्य विकास जहाँ भी दूध कलेक्शन सेंटर्स है वहाँ पर आप संपर्क करें, ये एजोला घास आपको मिल जाएगा। इसको नीचे प्लास्टिक लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा गोबर कंस होने के कारण घास को अच्छी तरह से धो करके तभी पशुपालकों को दें, तो पशुओं को दें तो आपको पशु खाएंगे चाव से, नहीं तो अत्या गोबर कंस होने के कारण वो नहीं खाते हैं।
1: जी,
0: तो इस तरह से आप शहर में हैं तो एजोला घास का इस्तेमाल करें, गांव देहात में हैं तो आप हमारा मुनगा है या हाथी घास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: सर ये तो दुग्ध उत्पादन के लिए बातें हुई, और इससे हमारे पशु के स्वास्थ्य पर, उसके बाढ़ बयान पर क्या असर पड़ता है?
0: आप अगर पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा आपको कि जो क्रॉसब्रेड नस्ल की हमारी बाछी है, जो अभी हम लोग शहर में देख रहे हैं कि 5, 3 साल 4 साल लग जाता है उसे गर्म होने में, उन्हें 12 से 13 महीने में निश्चित उससे गर्म होना चाहिए। तो हरा चारा देंगे तो वो गर्म होगी, जितना जल्दी गर्म होगी तभी उसका उत्पादन शुरू होगा। गायों में इसी तरह से है कि आप अगर हरा चारा खिलाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपकी गाय गर्म हो जाती है तो सालों साल बच्चा देगी। तो ये
1: जी
0: काफ ईयर प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुल होगा, तो गाय कम भी सूखेगी तो हमको कम खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप हरा चारा देते हैं तो गायों की रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक रहती है, तो उनसे कोई बीमारी नहीं होती है। तो हमारा वहाँ भी जो बीमारी खत्म होने पर, जो इलाज करने पर खर्च है उसकी भी कमी आती है। तो इस तरह से पशुपालन में हरे चारे के बिना पशुओं को रखना हमारे समझ से बहुत फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से बकरी अगर कोई रखे हुए हैं तो उनके लिए भी हरा चारा, तो ये सभी चारे बकरियों के लिए भी है कि अगर हम किसी कारण से उन्हें ग्रेजिंग पर नहीं ले जा पा रहे चराने के लिए तो
1: जी
0: उन्हें
1: जी
0: घर में ही हम हरा चारा दे कर करके उनको रखें, तो उससे भी हमारा मांस उत्पादन बढ़ सकता है। सुअर में भी हम बरसीम घास का, या थोड़े पौधे छोटे होते हैं तो उनको भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आंशिक रूप से हरे चारे पर, आंशिक रूप से अनाज के ऊपर सुअर पालन को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
1: जी सर, एक सवाल हमारे सामने आता है कि जहाँ पर हरा चारा प्राप्त करना मुश्किल सा कार्य है, नगण्य स्थिति है, तो उस परिस्थिति में हमारे किसान भाई पशुओं को किस तरह का स्वादिष्ट चारा दें जिससे कि ज़्यादा लाभ हो?
0: अब अगर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो रहा तो इसके लिए हमारे सलाह ये है कि कुछ किसान भाई जो गांव में रहते हैं वो हरे चारा का उत्पादन करें और शहरों में लाकर बेचें, तो उससे उनको शहर वाले को जो गायें हैं या जो पशुपालक हैं उनको हरा चारा मिल जाएगा, उनको बेचने से मुनाफा हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप सभी जानते हैं या कुछ किसान भाई इस्तेमाल भी करते होंगे मिनरल मिक्सर।
1: अच्छा
0: आप सभी किसान भाई को, पशुपालकों को ये जानकारी है कि 16 तरह के खनिज होते हैं और 3-4 टाइप के विटामिन्स होते हैं जो गायों के लिए जो आवश्यक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ये 4 विटामिन जो हैं ये उनके प्रजनन क्षमता को सुधार के लिए ये जरूरत है। साथ में दूध बढ़ाने के लिए सभी पशुपालक भाइयों को मालूम रहता है कि कैल्शियम के साथ अगर फॉस्फोरस और विटामिन डी न दिया जाए, सिर्फ कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो मिनरल मिक्सर अगर 50 से 100 ग्राम दे रहे हैं तो इसके आंशिक रूप से पूर्ति हो सकती है।
1: और हमारे ग्रामीण भाई बहन को आप क्या कहना चाहेंगे संदेश?
0: संदेश के रूप में मैं किसान भाइयों को यही कहूंगा कि आप जहां कहीं से भी हो, अगर आप पशु रखे हुए हैं तो हरे चारे जरूर लगाएं और अपना मुनाफा बढ़ाएं, और इस तरह से देश जो हमारे झारखंड में दूध का उत्पादन कम है वो राष्ट्र का जो औसत है उसके स्तर तक पहुंच सके, और इस तरह से झारखंड का विकास देश का विकास है और आपका विकास साथ में निहित है। तो मैं ये कहूँगा अंतिम में कि आप हरा चारा जरूर लगाएं, ऐसी कोई कठिनाई होती है तो आप अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से, जिला पशुपालन पदाधिकारी से पता कर सकते हैं कि हरे चारे के उपलब्ध सीड कहाँ पर उपलब्ध है, हमें क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है।
1: और ये मुफ्त वितरण भी होगा?
0: अभी कुछ चारे जो आ रहे हैं वो दूध संग्रहण केंद्र जो आपका है, जहाँ पर आप दूध मेधा डेयरी को आप दे रहे हैं, वहाँ से संपर्क करने पर आपको इसकी भी उपलब्धता है। बट विभाग में अभी, जिला पशुपालन कार्यालय में इसकी उपलब्धता अभी नहीं है। ये डाल्टनगंज में किसी भी खाद दुकान, बीज दुकान में आप संपर्क करें, लेकिन ब्रांडेड वेराइटीज जब भी लें तो ब्रांडेड वेराइटीज लें, अधिक उत्पादन होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप कार्यक्रम से जुड़े सर, और पशु चारा से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व। इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
3: और ये
2: मेरी बुढ़िया थी ना।
1: दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो। क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447

0: पर कॉल करें।
1: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया विश्व आदिवासी दिवस का उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मिलेगा न्याय, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने पर सहमत हुई राज्य सरकार। ईडी से जांच के प्रस्ताव के बीच गतिरोध बरकरार। छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का किया ऐलान। झारखंड समेत अन्य राज्यों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 11 अपराधी गुमला से गिरफ्तार। सोना, चांदी, नकद और हथियार बरामद। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और गर्जन के साथ भारी बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व आज जलवायु संकट के समय में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास पर जोर देते हुए शिक्षा को आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का आधार बताया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उदाहरण बताया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बोकारो में आयोजित महोत्सव में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया और पेटरवार प्रखंड के 6 गांवों को कुल 4,300 एकड़ रिकॉर्ड वन क्षेत्र का सामुदायिक वन अधिकार पट्टा प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गड़बड़ी पकड़ ली है और अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
1: राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर बातों को सुन भी रही है। मैं स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है लेकिन हमारी मनसा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ।
0: 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने पर राज्य सरकार सहमत हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2023 और 25 के जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा को भी रद्द करने पर सहमति बन गई है। आज आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और मंत्रियों के समूह के बीच दिन भर हुई वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच लगभग 98% मुद्दों पर सहमति बन गई है जबकि 2% मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि छात्रों ने कहा कि उनकी मांग सीबीआई से जांच और जीएसएससी सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं को भी रद्द करने की है, इसलिए छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इन तीनों से कल सीआईडी पूछताछ भी करेगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने आरोप लगाया कि इन छात्रों के बीच राज्य सरकार अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार और राजनीति करने का काम कर रही है। झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग समझ रहे हैं। इसी आंसू की कीमत तो

0: झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को चुकाना ही पड़ेगा। झारखंड में छात्रों के साथ राहुल गांधी फोन में बात करके उनको समझाने का काम करते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। छात्रों के हक में उनका जो मांग है उसके लिए मुख्यमंत्री जी की आवाज के बाहर जाकर के कांग्रेसी धरना दें।
1: इधर कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता विचलित हो गए हैं।
2: आंदोलन कर रहे थे

0: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
0: केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री आज कोडरमा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।
3: राहुल गांधी जी एक बार भी झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द भी वो बोले नहीं, न कोई कांग्रेस आगे आके बोल रही है। झारखंड के बच्चे क्या देश के बच्चे नहीं है? तो ये दोहरी नीति क्यों? अगर आप सही मायने में बच्चों का भविष्य, बच्चों का हित चाहते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य, हर जगह बोलना चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के धुरवा स्थित पारस HEC हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने इसे राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
4: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गुमला जिले से पुलिस ने एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिनजमा ने बताया कि इस गिरोह के अपराधी झारखंड समेत अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
5: कोरई गैंग के नाम से एक गैंग है जो कि विख्यात है, जिस तरह का काम करता है और जिन्होंने पहले इस तरह की घटनाओं को कारित किया है और अरेस्टिंग होती है और दो दो अभियुक्त जो है पालकोट थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके और जो घाघरा थाना क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ इन 11 अभियुक्तों को पकड़ा जाता है। सोना लगभग 70 ग्राम रिकवर हुआ है, चांदी लगभग 1.34 kg रिकवर हुआ है, नगद पैसा 1,70,000 रिकवर हुआ है। इन सभी 11 लोगों को हम लोग विभिन्न कांडों में फॉरवर्ड कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची, सिमडेगा, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ तेज बारिश होने की

0: की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हॉकी झारखंड की ओर से आज रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगूम के एक जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में महिला वर्ग का मैत्री मैच मोरहाबादी एकादश और बरियातू एकादश के बीच खेला गया, जिसमें मोरहाबादी एकादश ने 3-2 से जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया विश्व आदिवासी दिवस का उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मिलेगा न्याय। दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने पर सहमत हुई राज्य सरकार। ईडी से जांच के प्रस्ताव के बीच गतिरोध बरकरार। छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का किया ऐलान। झारखंड समेत अन्य राज्यों में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 11 अपराधी गुमला से गिरफ्तार। सोना चांदी नकद और हथियार बरामद। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और गर्जन के साथ भारी बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को संसाधन की कमी ना हो, इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बोकारो पुलिस को 39 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर राज्य सरकार गंभीर है।
2: 39 गाड़ियां इस लॉट में सरकार के द्वारा इस जिले को आवंटित की गई है और जिसकी वजह से जिला का पुलिस बल है उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। पुलिस का जो मूल मंत्र है सेवा ही लक्ष्य, उसके आलोक में हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे।
1: उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिला पुलिस के पास वाहनों की कमी थी, संसाधन होने से अपराधियों में भय व्याप्त होगा।
3: पुलिस की जो पहली प्राथमिकता है सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, विश्वास की भावना बढ़ेगी और अपराधियों में खौफ उत्पन्न होगा, यही उद्देश्य होना चाहिए। अपराधी अपराध करने से पहले सोचे, ये गाड़ियां उनको कहीं भी वो छुपे उन्हें पकड़ लेंगी और आम जनता तक तेजी से उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी। इसी विश्वास के साथ पुलिस की कार्य क्षमता में विस्तार करने की दृष्टि से ये गाड़ियां राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है।
1: बोकारो हवाई अड्डा से बहुत जल्द व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। निरीक्षण को आए रांची एयरपोर्ट के प्रबंध निदेशक SP सिन्हा ने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, आदेश आते ही उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी।
4: अभी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका, तो ये फाइनल स्टेज में है और DGCA से लाइसेंस प्राप्त करना है, तो जैसे ही DGCA लाइसेंस हम लोगों को देती है वी कैन स्टार्ट। अब उसमें थोड़ी बहुत कामियां हैं, पूरा कर रहे हैं, आज उसी के लिए बैठक कर रहे हैं और उसको कर करके जल्दी ही कंप्लायंस इसको हो जाएगा। ये टाइमलाइन तो फिक्स होता है, हम लोग वर्क प्रोग्रेस के आधार पर करते हैं, तो वर्क प्रोग्रेस में बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इश्यूज आती हैं, तो टाइमलाइन तो थोड़ा डिफर करता है।
1: जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित आयोजित एक कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, ऐसे में हम सभी को आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा।
5: मेन पर्पस यही है कि कैसे पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखना है, ना बहुत ज्यादा भागने देना है ना बहुत ज्यादा कम हो जाए, उसको देखते हुए

0: को एक ऑप्टिमल ब्रैकेट में लेकर के आए ताकि जापान जैसा भी कंडीशन ना हो या ओवर पॉपुलेशन इश्यूज भी ना हो, थोड़ा सा एनालिसिस में हम लोग जाए। ओवर पॉपुलेशन के अपने इश्यूज है, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो सीमित है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेज पर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और हमारे आने वाले जो जनरेशन है फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज क्रंच फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का ही अगर हम लोग बात करें तो वाटर बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स वो लिमिटेड है और अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर एज ए रिसोर्स पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा।
1: पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसान खुश हैं। जिले में धान रोपनी युद्ध स्तर पर चल रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
2: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब लीजिए पेश है गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में चंद गज़लें। इसी के साथ स्वरांजलि कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के तहत शारदा सिन्हा की गाए कुछ भजन, माफ़ करेंगे, शारदा सिन्हा के गाए कुछ लोक गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

अभी आपने सुना जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गाना, और अब आइए सुनते हैं चिराग फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। मजरूह के बोलों को सुरों से सजाया है मदन मोहन ने।

कारवां फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। 9:15 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार। प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत

किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र

0: कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह वर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था। नेज जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अदा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ीय मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: देने, नेज आजादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संगे मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मुनक्किद किए जाएंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियां जिला हेडक्वार्टर्स, सब डिविजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक्किद करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्त की

0: के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के ज्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इत्तेफाक हो गया है। रियासती वजीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तहान और 2023-25 के बैकलॉग इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मुबैना माली बेजाब्तगियों की तहकीकात, मुजरिमाना पहलुओं की CID तहकीकात और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के क्याम पर भी इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाज़े पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की खवातीन के माथे के सिंदूर के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
1: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली के पेस अस्पताल में सिंदूर महारक्त दान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्त दान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि ये इकदाम बेलौज खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1 करोड़ मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फहरिस्त के अफराद के लिए, 14,000 से ज्यादा दर्ज फहरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं। स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ्फुज़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था। PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद।
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا، جس سے زیجیانگ اور

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आरडी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाप ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

का प्रसारण हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम है रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्मी गाने। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण। प्रतीक्षा करें।

0: कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रम

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.